मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी

0: भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाइस देश गान के साथ।

जिस प्रकार ज्योति घोर अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर की असीम भक्ति, ईश्वर पर असीम विश्वास व सच्चा समर्पण हमें अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाता है। जगत के पालनहार को नमन, संसार के रचयिता को नमन।

श्रीनाथ जी श्री कृष्ण भगवान के 7 वर्ष की अवस्था के एक रूप है, अर्थात ये श्री कृष्ण भगवान ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को एक नया आकार दो। इंसान ही अपनी इच्छा शक्ति से अपना शत्रु और अपना एकमात्र मित्र बन सकता है। जिसने खुद को जीत लिया, उसने सब पर विजय पा ली।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे जगजीत सिंह, हेमा देसाई और मोहम्मद रफी के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:26 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। विषय है हितकारी और प्रिय सत्य।
1: ईश्वर है और सत्य का पालन करना सबसे पुनीत कार्य। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की कीर्ति का आधार उनकी सत्यनिष्ठा ही थी। राजपाट, धन वैभव, पत्नी पुत्र इस सत्यनिष्ठा के आदर्श के सामने तुच्छ माने गए। भीषण से भीषण कष्ट सहकर भी सत्य की रक्षा करना नैतिक दृष्टि से मानव का कर्तव्य है। साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म सभी अपने अपने ढंग से सत्य के उद्घाटन के प्रयास ही तो हैं। सत्य को जीवन में उतार कर एकाकार कर देने के लिए इन सोपानों को लक्ष्य किया जा सकता है। सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य पथ और सत्कर्म। जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए उसका निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार निश्चित लक्ष्य चुन लेने पर दृढ़ निश्चय करके किए गए प्रयास असफल नहीं हो सकते, चाहे पथ में बाधाएं भले ही थोड़ी या अधिक आ जाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जाके यही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले हैं न कछु संदेहू। सागर की ओर दौड़ती हुई

0: हुई नदियों को सदा के लिए कौन रोक सका है। निर्झरों ने पत्थर कंकड़ों की तो क्या, बड़ी बड़ी चट्टानों की बाधा भी स्वीकार नहीं की। फिर मनुष्य का सत्य संकल्पित मन बाधाओं से हार क्यों माने। वचन की सच्चाई सामाजिक जीवन का आधार है। एक दूसरे की बात को सत्य मानने के विश्वास पर समाज का सब कार्य व्यवहार चलता है। सत्य के पालन में शब्दों से अधिक उसमें निहित अर्थ का, आत्मा का सत्य मूल्यवान है। जैसा घटित हुआ उसे वैसा ही विवेक शून्य शाब्दिक रूप दे देना ही सत्य कहा जा सकता है, पर वह सत्य का आदर्श रूप नहीं है। सत्य हित और प्रिय के समन्वित रूप को ही आदर्श सत्य बताया गया है। निर्लोभ और निर्भीकता सत्य पथ के पाथेय हैं। सत्य के बल पर टिकी निर्भीकता मानव जाति का गौरव बन जाती है। सत्य संकल्पों से युक्त सत्य पथ पर अग्रसर मानवीय भावनाएं सत्कर्मों की जननी हैं। मैत्री, करुणा और शांति आदि के सभी कार्य सत्कर्म की कोटि में आते हैं, जो संकुचित स्वार्थों से हटकर मानवता के कल्याण के लिए किए जाते हैं। वचन भंग, विश्वासघात और हिंसा के आघातों से पीड़ित विश्व मानवता आज सत्य और अहिंसा की नीति की ओर आशा भरी दृष्टि लगाए हुए है। सत्य की असत्य पर विजय निश्चित है। सत्य में विजयते।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति। खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है पशुओं में अफरा रोग कारण और निवारण। स्वास्थ्य चर्चा में बात होगी जल चिकित्सा पर। जानकारी देंगे डॉक्टर यादराम शर्मा। प्रसारण समय सुबह 7:10।

सुबह 9:25 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:45 पर गायक कलाकार हैं मिथिलेश।

संगीतकार राम लक्ष्मण पर केंद्रित है कार्यक्रम आज के कलाकार। प्रसारण समय दिन में 11 बजे। जैव विविधता दिवस पर आधारित है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। प्रसारण समय दिन में 11:30 पर।

दोपहर 1:15 पर घर संचार कार्यक्रम में चर्चा होगी जैव विविधता दिवस पर। मेरी पहचान में बात होगी ऑनलाइन बिजनेस में बढ़ती रुचि पर। फैशन ब्यूटी चटपटी रेसिपी के साथ सुनेगा स्वीटी गोस्वामी से काव्य पाठ। वहीं दोपहर 1:45 पर डॉक्टर मेधा सचदेवा के स्वर में आनंद लीजिएगा गीत व भजनों का कार्यक्रम होगा सुगम संगीत का।

वहीं सायंकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी पैक्ड फूड कलर कोडिंग पर। नई पहल में बात होगी बौद्धिक संपदा उत्प्रेरक पहल की। साथ ही सुनिएगा कृतिका श्रीवास्तव से वार्ता, शीर्षक है शहरीकरण के दौर में जैव विविधता का भविष्य।

शाम 6 बजे ग्रामीण लोक कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बुजुर्गों के प्रति हमारे दायित्व और विश्व जैव विविधता दिवस। मंडीभा मौसम की जानकारी व लोकगीतों के साथ सुनेगा ब्रज क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती पर डॉक्टर पंकज लवानिया से भेंट वार्ता। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में ज्ञान सागर सेहत टिप्स फिल्म संगीत के साथ पद्मजा शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधा।

शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र होगी डॉक्टर नितिन कुमार की वार्ता। शीर्षक है, पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है जैव विविधता। शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। फिल्मों से कव्वालियों का कार्यक्रम नश्य किया जाएगा रात्रि 8:00। रात्रि 9:30 पर प्रसारित किए जाएंगे करंट अफेयर्स। वहीं रात्रि 10:00 सुनेगा कार्यक्रम प्रदेश दर्शन और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित रविशंकर से सितार वादन। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता। शीर्षक है पशुओं में अफरा रोग कारण और निवारण।
1: अफारा रोग अक्सर गोमंथ वाले पशुओं में पाया जाता है। गोमंथ वाले पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। गोमंथ आमाशय का पहला भाग है, जिसमें पशु आहार को इकट्ठा कर लेता है, फिर जुगाली के माध्यम से दांतों से चबाकर आहार के मोटे मोटे कणों को छोटा करके वापस गोमंथ में करता है। अफारा को अंग्रेजी में टिम्पेनी तथा ब्लोट कहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख कारण है रोमंथ में अधिकाधिक मात्रा में हवा भर जाना, जो पशु के लिए घातक होती है। हवा बनने के कारण हरा चारा की बहुत सी मात्रा खा लेता है। हरा चारा जिसमें पत्तियां अधिक हो, उसमें पानी की मात्रा का प्रतिशत 80 से 90 तक होता है। इस प्रकार चारे को कोमल ग्वार, लोबिया, दूब, घास, रिजका आज बरसात के मौसम में तथा बरसीम जई या जाड़ों के मौसम में है। जब इन चारों में पानी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो रोमंथ में भाप बनकर अधिक मात्रा में बनकर उसे गुब्बारे की भांति बना देता है। अतः ऐसी दशा में हरे चारे के साथ गेहूं, चना, जौ आदि का भूसा अथवा सूखी ज्वार की कड़वी मिलाकर खिलाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ जब रोमंथ वाले पशुओं को खिलाते हैं, तो उससे भी अफारा होता है। यदि पशु को बाई कोख में थपथपाएं, तो ऐसा लगेगा कि हम गुब्बारे को थपथपा रहे हैं। यह अफारा रोग है। यदि थपथपाने से ऐसा लगे जैसे गुथा हुआ आटा भरा हो, तो हम पाएंगे दूसरी बीमारी, जिसका नाम है इंफेक्शन। अफारा पशुओं का साधारण रोग है, जो गलत आहार के कारण

होता है, यह छूत की बीमारी नहीं है, जैसे घुर का, पौ का, जहरी बुखार आदि। अतः हमको सावधानी पशु के खाने में बरतनी चाहिए कि उसे संतुलित आहार मिले जिसमें ठोस पानी की अनुपात सही हो, सड़ा गला आहार बिल्कुल नहीं दें। यदि पशु बोलता नहीं है तो हमें उसकी दयनीय दशा पर कठोरता से मनमानी नहीं करनी चाहिए। हींग अधिकतर सभी पशुपालकों को घर में मसालों के तौर पर पाई जाती है, अतः अपारे के इलाज में हींग की 8 ग्राम मात्रा, सौंफ की 8 ग्राम और काला नमक 8 ग्राम मिलाकर 4 घंटे के अंतर पर इतनी मात्रा में खिलाएं। पशु धीरे धीरे कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अगर अफारा हल्का है तो पशु को 8 ग्राम सौंफ 8 ग्राम 6 घंटे के अंतर पर दी जा सकती है। तारपीन का तेल भी अफारे के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरुण गाय भैंस को तारपीन का तेल 60 मिलीलीटर, अमोनिया का घोल 60 मिलीलीटर और अलसी का तेल आधा लीटर खूब मिलाकर नाल के माध्यम से मुंह को ऊपर उठाकर पिलाएं। ध्यान रहे यह श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, अतः फेफड़ों में पानी भरने से जानवर मर सकता है। इस इलाज में पशु को जल्दी आराम मिलता है। यदि अंग्रेजी दवाइयों की दुकान जहां पशु की दवाइयां उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में एल्वोनॉक्स नामक दवाई उपयोग की जा सकती है। यह दवाई आसानी से दी जा सकती है और यह बहुत अधिक कारगर है। यदि आपको लगता है कि पशु अधिक बेचैन है तथा अत्यधिक छटपटा रहा है और अफारे के कारण रोमंथ बहुत फूलता जा रहा है, कि पेट फटने की आशंका है अथवा लंग्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से और हृदय पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से पशु की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी दशा में वे टोकार कैनुला नाम का औजार पशु के लिए लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए पशु चिकित्सक काबिल है और उसे बुलाना चाहिए। टोकार एक छड़नुमा औजार है जिसकी एक कोने को नुकीला कर दिया जाता है और कैनुला एक खोखला पाइप है जिसमें टोकार फंसा होता है। लगाते समय उसके पशु की बाई कोख में घोंप दिया जाता है, टोकार निकाल लेते हैं, कैनुला फंसा रहता है। इस तरीके से रोमंथ की हवा निकल जाती है, पशु बच जाता है। पशुओं को अक्सर नाले का पानी पिला देते हैं और नाले के पानी में बहुत से पारजैविकी बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं, वायरस। इस प्रकार उनसे अनेक बीमारी हो जाती हैं और यह अफारा रोग भी उत्पन्न कर सकता है। और उसमें सीवेलचाई एक प्रमुख कीड़ा है और पारजैविकी में फैसियोला हेपेटिका आदि अनेक पारजैविकी होते हैं। टेप वर्म्स भी उनमें से एक है। इस प्रकार के पारजैविकी भी पशु के लिए खतरनाक होते हैं। विषाणु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर उनको अवस्था जल्दी से खत्म हो जाती है। अतः पानी को हमें साफ सुथरा पिलाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में होलसम कहते हैं, कि पानी जो है गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी नाली का और गंदे ड्रेनेज का पानी पिला दें वो पशु के लिए खतरनाक है। ऐसा है कि पानी को अगर शहर में रह रहे हैं तो क्लोरिनेटेड वाटर पिलाएं, और अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो गंदे पोखर में न पिलाएं जहां स्टैग्नेंट वाटर है, वो पशु के लिए नुकसानदायक होता है। बहता हुआ पानी पशु के लिए बहुत उपकारी है, इसीलिए बहते हुए पानी को पिलाना चाहिए। और अगर इस पानी से अफारा रोग या कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देने बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक में कई ग्रुप हैं, जिनमें एक तो बैक्टीरियोसाइट हो जाता है जो कीड़े मारता है, दूसरा इन कीड़ों को बाहर निकालता है, स्टैटिक कर देता है। तो ऐसे इलाज में खुद नहीं करना चाहिए, पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए कि उसे क्योंकि

0: पेस्टिसाइड जो है बीमारी को अगर मान लो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जब कीड़ा मरता है तो उसमें से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पशु के लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए उनकी डोज जो खुराक है वो नियमित करनी चाहिए, क्योंकि ये काम है पशु चिकित्सक का है, किसी ऐसे अतार वगैरह से या किसी ऐसे अनाड़ी से नहीं इलाज कराना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सक जो है आदमी की दवाई वो भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर पशु की दवाई नहीं उपलब्ध है तो आदमियों की दवाइयों को उस डोज में कन्वर्ट करके भी इलाज कर सकता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बृजभूषण सिंह की वार्ता, शीर्षक था पशुओं में अफरा रोग कारण और निवारण।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का, इंतजार कुछ पलों का।

अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं, सागरीय आतंकवादः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं, अवैधं अनिर्दिष्टं अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनं अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्च न्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य

0: विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित

0: मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's joint director, East, will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at the Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Minister of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway officials,

0: officials and field officers from across the country attended the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him the opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
1: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so this is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
0: Mr. Rubio will be in India from the 23rd to the 26th of this month and will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. The Quad meeting is scheduled on the 26th of this month. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: Medium wave 196.1 meter par ye Akashvani ka Agra kendra hai. सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता जिसका शीर्षक है जल चिकित्सा। वार्ताकार हैं डॉक्टर यादराम शर्मा।
3: प्राणी मात्र को होने वाले भयंकर रोगों को नष्ट करने के लिए जो अद्भुत शक्ति औषधियों प्रकृति ने अपने भंडार में संचित की है उनमें जल मुख्य है। जल प्राणियों के लिए प्राण स्वरूप है। अन्न के बिना बहुत दिन तक प्राणी जीवित रह सकता है परंतु जल के बिना थोड़े ही समय में प्राण का नाश हो जाता है क्योंकि तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है और मोह से प्राण का नाश होता है इसलिए जीवन रक्षण के किसी भी अवस्था में जल का त्याग नहीं किया जा सकता मां जीवन रक्षण के लिए जल ही उपयोगी नहीं है बल्कि व्याधि और चिकित्साओं के लिए भी बहुत जल बहुत ही उपयोगी है जिस प्रकार बहुत सी औषधियों को खिलाकर अथवा बाहर से लगाकर रोगों को नष्ट किया जाता है उसी प्रकार औषधियों के सिवाय जल से ही अनेक रोग दूर किए जा सकते हैं प्राचीन काल से इस देश में यह रीति रही है और वैदिक शास्त्रों में भी विस्तृत रीति से इसका उल्लेख किया गया है परंतु आज दुख का कारण यह है कि आजकल हमें पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है रीति रिवाजों पर से विश्वास उठ गया है और अपने शास्त्रों की बताई हुई बातों को मानने में अहम आनाकानी करते हैं परंतु जिस प्रकार पश्चिमी विद्वान अपने शास्त्रों की बताई हुई बातों को अनुभव प्राप्त करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं उसी प्रकार हमें भी अपनी नवीन खोजों को लोगों के सामने उत्साहपूर्वक प्रकट करना चाहिए जल द्वारा रोगों को दूर करने की विधा जो इस देश में टूटी फूटी दशा में चलती आई थी पाश्चात्य विद्वानों के हाथ लगी और विशेष अनुभव में आई जल उपचार में उपयोगी हो सकता है इस बात की जांच पश्चिम देशों में पहले पहल की थी सीपीसीआ के बीसेंट प्रीजनिस्ट नामक एक पुरुष ने की थी परंतु इसके बाद बहुत से सुधार होने पर रोगों को जल से ही आराम करने की पद्धति चली इस पद्धति के अनुसार उपचार करने के दो मुख्य विभाग हैं बहुत से उपचारक अनेक रोगों को दमन करने के लिए शुद्ध जल का उपयोग करते हैं और कितने ही शुद्ध प्राकृतिक ढंग के झरने या कुंडों का जिनमें रासायनिक क्षार मिश्रित जल होता है उसका दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं जो केवल शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं उसे उस पद्धति को हम वाटर क्योर कहते हैं और जो दोनों प्रकार के जलों का उपयोग करते हैं उसे हम हाइड्रोपैथी कहते हैं इन दोनों पद्धतियों को हम अपनी भाषा में जल चिकित्सा कहते हैं इस जल चिकित्सा का शास्त्र इतना बड़ा है कि संपूर्ण वर्णन करें तो इस ग्रंथ का एक ग्रंथ बन जाए।

0: जाएगा। इस समय केवल कुछ उपयोगी जल चिकित्सा के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। ऊंचा जलपान प्रातःकाल सूर्योदय के पहले लघु शंका अर्थात मूत्र त्यागने के बाद बिस्तर पर ही बैठकर जो मनुष्य रात्रि को तांबे के पात्र में जल भरकर सुबह पिए उस मनुष्य के बड़े हुए वात पित्त और कफ शांत होते हैं और मनुष्य के मन में बहुत ही शांति उत्पन्न होती है और वह शक्तिशाली बनता है। पीने की जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए इस विषय में निघुंड रत्नाकर बतलाते हैं कि सूर्योदय के समय 8 अंजलि अर्थात 0.25 लीटर पानी पीना चाहिए। निद्रापद स्नान, जिसे अच्छी नींद नहीं आती हो, सोने के पहले से दोनों पैरों को कुछ गर्म जल में डुबोकर सिर पर ठंडे जल की धार डालनी चाहिए। इससे सिर का रक्त पैरों की तरफ तेजी से जाएगा और थोड़ी देर में अच्छी नींद आ जाएगी। शांतिदायक स्नान, रोगी को आराम की कुर्सी पर बैठाकर उसके सिर पर ऊंचे से जल की फुहारें डालनी चाहिए। इससे सिर बहुत ही आनंदित हो जाता है। जिन्हें मानसिक कार्य करना पड़ता है उनके लिए यह स्नान बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ आंखों की दृष्टि तेज होती है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। जल का प्रयोग करना हो तो हवा और पंखे को बंद कर देना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जल चिकित्सा का सही प्रकार से यदि उपयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में एक नई ताजगी, स्फूर्ति तथा स्वस्थ रहकर अपनी अच्छी से अच्छी सेहत का आनंद ले सकता है तथा विभिन्न रोगों से भी बच सकता है। हमारे भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथि गावा। अर्थात मानव देह का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जो कि अनेक जन्मों के संचित पुण्य और शुभ कर्मों का फल है। जिसने यह मानव शरीर रूपी मिला है, इसके साथ साथ मानव के 7 सुखों का भी वर्णन मिलता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख राज में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, शीर्षक था जल चिकित्सा, वाटाघाट थे डॉक्टर यादराम शर्मा।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग

0: पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:38

हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित इस कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए सूचनाओं का सिलसिला शुरू करते हैं भीषण गर्मी के साथ। जी हां, शुष्क हवाओं ने यूपी को बेहाल कर दिया है। अगले तीन दिन इस भीषण तपिश और बेचैनी का सामना लोगों को और करना होगा। गुरुवार को आगरा समेत सूबे के 26 शहरों में तपिश ने कहर ढाया। बांदा का तापमान पांचवें दिन भी सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए आगरा समेत 43 जिलों में भीषण गर्मी हीटवेव की स्थिति का अलर्ट जारी किया है। इनमें 10 जिलों के लिए रेड और 33 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

जहां गर्मी अपना असर दिखा रही है, वहीं कुछ सावधानियां बरतकर हम अपने आप को सुरक्षित कर रख सकते हैं। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। दोपहर में लंबे समय तक धूप के सीधे संपर्क में आने से बचें। हल्के रंग के कपड़े जो कि ढीले भी हों और पूरी बांह के सूती कपड़े पहने। धूप का चश्मा लगाने के साथ सनस्क्रीन का उपयोग जरूर करें और धूप में जाते समय सिर को अच्छी तरह से ढके। निर्जलीकरण से बचाव के लिए तरल पदार्थों का सेवन समय समय पर करते रहें। ORS घोल घर में बने पेय पदार्थ जिसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ का सेवन करते रहें। घर को ठंडा रखें, रात में खिड़कियां खोल कर रखें। बच्चों को वाहन के अंदर और जानवरों को खुले में नहीं छोड़ें। उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी भोजन का सेवन भी नहीं करें। साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से भी बचें। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए 31 मई को सुबह 9:30 से 11:30 तक प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में आज से मकानों को गिने जाने का सिलसिला शुरू होगा, जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में की जाएगी। शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर घर जाएंगे, लोगों से 33 सवाल पूछेंगे जिन्हें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन दर्ज करेंगे। वहीं स्वगणना का गुरुवार को अंतिम दिन था।

वहीं भारत ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी की है। जिन यात्रियों में संक्रमण के लक्षण हैं, वे आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के अधिकारियों को इसकी सूचना दें। अफ्रीकी देशों में इबोला का बढ़ता संक्रमण देख भारत अफ्रीका फोरम के चौथे शिखर सम्मेलन को भी स्थगित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों डिग्री कॉलेजों में पढ़ रही छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। विद्यार्थियों के बीच समानता अनुशासन बढ़ाने के

आसपास कार्यक्रम में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार पुनः शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला और नजर डालते हैं हमारे विद्यार्थियों से संबंधित मुख्य सूचनाओं पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर का पहला परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गुरुवार को बीसीए षष्ठम सेमेस्टर सत्र 2025-26 का परिणाम जारी किया गया। हालांकि बीसीए षष्ठम सेमेस्टर में लिखित परीक्षा नहीं कराई गई थी, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय महाविद्यालय आगरा कैंट से बीए, बीएससी और बीकॉम किया जा सकता है। राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंटरमीडिएट कर चुके छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रों की मदद के लिए महाविद्यालय में वेब रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम आसपास में आपका पुनः स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। परिषदीय विद्यालयों की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब बेसिक शिक्षा परिषद दोबारा चयन सूची तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के 13 अगस्त सन 2024 के फैसले के आधार पर नई सूची बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 के लिए व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हाई स्कूल में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षा थी, अंक सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी उस विषय में अब कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में वह परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जो सभी विषयों में उत्तीर्ण होंगे और किसी एक विषय में अंक सुधार चाहते होंगे। इसके अलावा अंक सुधार परीक्षा का प्राविधान इंटरमीडिएट में भी इस बार से किया जा रहा है।

और आइए नजर डालते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर। पहली सूचना के अनुसार प्रेम किशोर पुत्र घनश्याम सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी शाहजहांपुर जनपद झांसी, ये दिनांक 13 मार्च 2025 से लापता है। इनका कद 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला, शरीर की बनावट सामान्य व चेहरा लंबा है। गुमशुदगी के दौरान ये ब्लैक कलर की चौखाना शर्ट व सफेद धारीदार पैंट पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर जनपद झांसी पर सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार निक्की पुत्र दीपक वर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी बीएसए के सामने सीतानगर थाना एतमौदाला आगरा, ये दिनांक 17 फरवरी सन 2026 से लापता हैं। कद 5 फुट 1 इंच, शरीर सामान्य, चेहरा सामान्य, बालों का रंग काला। गुमशुदगी के दौरान ये सामान्य कपड़े अर्थात पैंट शर्ट पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना एतमौदाला आगरा पर सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार दिव्या यादव पुत्री महेंद्र सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी इन्फेंट्री लाइन पुलिस चौकी थाना सदर बाजार आगरा, इनका कद 5 फीट 2 इंच है, रंग गेहुआ, चेहरा बाल सामान्य है, रंग गेहुआ। गुमशुदगी के दौरान ये सामान्य सूट पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना सदर बाजार आगरा पर सूचित करें और गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं श्रोताओं यहीं पर संपन्न होती हैं। कार्यक्रम आसपास को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

0: इस मधुर गीत के साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी

0: देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र

0: पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना।

0: गया और अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के एसएसपी दिलजिंदर सिंह ढिल्लो ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नजदीक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाकई मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके कयाम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकत दार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वुजरा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में ये 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। IMD ने पंजाब और मकरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रिबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग, बहरान के दौरान आवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आजम, तमाम वजरा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफा अव्वल की अहम खबर है, मुल्क में SIR के तीसरे मरहले का आगाज, 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में खसूसी नजरसानी मुहिम चलेगी। وزیر دفاع نے جنوبی کوریا میں بنی ہندوستانی جنگی یادگار کا افتتاح کیا۔

शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

डोली सजा के रखना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एमजी श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। शब्द रचना महबूब की थी, संगीत एआर रहमान का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सुखविंदर सिंह और जसपिंदर नरूला की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल क्या करे, बोल आनंद बख्शी के, संगीत जतिन ललित का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत कुमार शानू के स्वर में। गीतकार हैं नवाब आरजू, संगीतकार नदीम शमन और फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

कुमार शानू के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियाँ लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेस वे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया।
3: ये गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद जिले से जोड़ रहे हैं, और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले।
2: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्तर अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी कि 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रांगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी।

0: होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में पंजीकरण के बाद, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सिविलियन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
1: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
2: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनुप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी ना रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, सीसीटीवी क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रिया से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से

0: प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्र जीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
1: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठे वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताजा पानी पीने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
0: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा में यंत्रीकरण के संबंध में गांधी जी के विचार।

और अब यंत्रीकरण के संबंध में बापू के विचार, मैं मशीनों का नहीं वरन उनकी अंधाधुंध चाह का विरोधी हूं। आज श्रमहारी मशीनों की प्रबल चाह है, मनुष्य यहां तक श्रम को बचाता जा रहा है कि हजारों लोग बेकार हो जाते हैं तथा भूख से तड़प कर मरने के लिए सड़कों पर जा पड़ते हैं। मैं मनुष्य के किसी अंग के लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के लिए समय की बचत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संपत्ति का संग्रह कुछ लोगों के हाथों में नहीं वरन सबके हाथों में हो। आज यंत्र चंद लोगों को करोड़ों लोगों की पीठ पर सवारी करने में मदद कर रहे हैं। इनके पीछे मूल प्रेरणा श्रम को बचाने की नहीं वरन लोभ की है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक सत्य और खोज को लोभ का साधन बनाना बंद कर दें, तब मजदूरों पर काम का दबाव नहीं रहेगा तथा यंत्र बाधक के स्थान पर सहाय बन जाएंगे। मैं यंत्र मात्र का उन्मूलन नहीं नियंत्रण चाहता हूं। मैं एक बात साफ कर दूं कि मेरे सामने मनुष्य ही प्रमुख लक्ष्य है। यंत्र मनुष्य के अंगों को बेकार न बना दे। मैं इसमें कुछ अपवाद करना चाहूंगा, जैसे सिलाई मशीन। मैं चाहता हूं कि श्रम की दशाओं में परिवर्तन होना चाहिए। संपत्ति के लिए अंधी दौड़ समाप्त होनी चाहिए तथा श्रमिक को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि उसे केवल एक न्यूनतम वेतन ही प्राप्त नहीं होगा वरन एक ऐसा प्रतिदिन का धंधा भी उसे मिलेगा जो कि उसके लिए मुसीबत

नहीं बनेगा। मैं यंत्रों के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु जब यंत्र हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं तब मैं उनका पूरी तरह विरोध करता हूं। मैं अपने विचार के अनुसार भारत का औद्योगिकरण चाहता हूं, ग्राम समाज का संगठन फिर से होना चाहिए, भारत के गांव भारतीय नगरों की समस्त आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करके उन्हें पूरा करते थे। जब हमारे नगर विदेशी बाजार बन गए और वे विदेशी वस्तुओं के व्यापार द्वारा भारतीय गांवों का जीवन नष्ट करने लगे, तब भारत निर्धन हुआ। हम अनुपम जीवित यंत्रों अर्थात हमारे अपने शरीरों को बेकार छोड़कर नष्ट कर रहे हैं और उनके स्थान पर निर्जीव यंत्रों की स्थापना कर रहे हैं। विश्राम एक सीमा तक ही अच्छा और आवश्यक हो सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को पसीना बहाकर रोटी कमाने के लिए पैदा किया है। मुझे भय है कि यदि हम जादू के जोर से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। जब उत्पादन और उपभोग स्थानीय होते हैं तो उत्पादन को किसी भी प्रकार अधिकाधिक बढ़ाने का आकर्षण नहीं रहता। हमारी वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था से जो कठिनाइयां और समस्याएं पैदा हुई हैं उसमें वे सब भी समाप्त हो जाती हैं। उस स्थिति में चंद लोगों की जेब में अधिकांश संपत्ति का अस्वाभाविक संग्रह तथा विपुलता के बावजूद भी शेष समाज के लिए दरिद्रता का अभिशाप नहीं रह सकेगा। ये थे यंत्रीकरण के संबंध में बापू के विचार। और अब सुनते हैं MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

भजन में वर्णन है, हमारा जीवन अलग अलग अवस्था में विभिन्न झंझटों में फंस जाता है। हर काम करता है लेकिन एक काम करना ये मन भूल जाता है, वो है ईश्वर का नाम लेना। तो अलग अलग अवस्थाओं में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन से झंझट होते हैं जिनमें मनुष्य उलझ के रह जाता है, उसका वर्णन है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 होने को हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के गायक कलाकार हैं मिथिलेश।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 10 बजने को हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दिया हुआ, और फिल्म का नाम है मेरी हमदम मेरी दोस्त।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मिलन।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे हमसफर से। बोल आनंद बख्शी के दिए हुए हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की और स्वर महेंद्र कपूर, बलवीर व साथियों का।

गुलशन बावरा का लिखा हुआ गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के सुर में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम है हाथ की सफाई।

तकदीर फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना मजरूर सुल्तानपुरी की, धुन बनाई है आरजी बर्मन ने और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

यादों की बारात इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एल के पंडित का गाया राग शुद्ध सारंग में ख्याल का।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपने सुनी कलाकार एलके पंडित द्वारा राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र का प्रसारण, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज आप और हम मिलकर

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज आप और हम मिलकर एक ऐसी सुरों की जोड़ी का जीवन का सफर तय करेंगे जिसने प्रेम परिवार और भावनाओं को संगीत में ढाल दिया। कुछ धुनें केवल कानों तक पहुंचती हैं लेकिन कुछ धुनें सीधे दिल में उतर जाती हैं। जी हां श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में कुछ संगीतकार ऐसे हुए हैं जिनकी धुनें समय की सीमाओं को पार कर अमर हो गई हैं। जब भी 90 के दशक के मधुर पारिवारिक और प्रेम से भरे गीतों की बात होती है तो एक नाम अत्यंत आदर और स्नेह के साथ लिया जाता है। जी हां, और वो नाम है राम लक्ष्मण। आज इसी जोड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण की जोड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम लक्ष्मण वास्तव में दो व्यक्तियों की जोड़ी नहीं थी? क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे एक गहरी मित्रता, संघर्ष और भावनात्मक स्मृति छुपी हुई थी? और क्या आप जानते हैं कि जिन धुनों पर पूरी पीढ़ियां घूमी उनकी रचयिता ने अपने जीवन में गुमनामी, असफलता और अकेलेपन का भी लंबा दौर देखा? तो ये कहानी केवल एक संगीतकार की नहीं बल्कि उस कलाकार की है जिसने अपने दर्द को सुरों में बदल दिया, जिसने प्रेम को संगीत दिया, परिवार को भावना दी और भारतीय सिनेमा को ऐसी धुनें दी जो आज भी हर दिल में बसती है।

जी हाँ श्रोताओं, ऐसा संगीत जो लोगों के दिलों में हमेशा बस जाए। और ऐसी ही रहस्यमयी जोड़ी थी राम लक्ष्मण। आखिर कौन थे राम लक्ष्मण? 1970 और 80 के दशक में जब फिल्मों के पोस्टरों पर म्यूजिक बाय राम लक्ष्मण दिखाई देता था, तो अधिकांश लोग समझते थे कि यह दो संगीतकारों की जोड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे शंकर जयकिशन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भावुक थी। दरअसल राम और लक्ष्मण दो मित्र थे, दोनों साथ मिलकर संगीत बनाया करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश लक्ष्मण का असमय निधन हो गया। इसके बाद विजय पाटिल ने अपने दिवंगत मित्र की याद को जीवित रखने के लिए राम लक्ष्मण नाम को बनाए रखा, और यही वजह है कि बाद में अकेले काम करने के बावजूद उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। सच्ची दोस्ती मृत्यु से भी बड़ी होती है, और यह कथन राम लक्ष्मण की जीवन यात्रा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। राम लक्ष्मण का वास्तविक नाम विजय पाटिल था। उनका जन्म महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। घर का वातावरण बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन संगीत के प्रति उनका लगाव अत्यंत प्रबल था। वे घंटों रेडियो पर गीत सुनते और धुनों को समझने की कोशिश करते। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों और फिल्मी गीतों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। विजय पाटिल के साथ भी यही हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बना लिया।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुरों की जोड़ी राम लक्ष्मण के बारे में। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में पहचान बनाना आसान नहीं था। उस समय संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित थे, जैसे कि नौशाद, एस जी वर्मन, आर डी वर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसे दौर में नए संगीतकार के लिए जगह बनाना बहुत कठिन था। विजय पाटिल और उनके साथी लक्ष्मण छोटे मोटे कार्यक्रम में संगीत प्रस्तुत करते, ऑर्केस्ट्रा में काम करते और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते रहे। संघर्ष इतना कठिन था कि कभी कभी उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना कि जिस सपनों की कीमत संघर्ष से चुकानी पड़ती है, और यही उन्होंने किया। अपने सपनों की कीमत संघर्ष से चुकाई। लेकिन राम और लक्ष्मण केवल संगीत साथी नहीं थे, बल्कि घनिष्ठ मित्र भी थे। दोनों की सोच, संगीत की समझ और सपने एक जैसे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मण का अचानक निधन हो गया। यह विजय पाटिल के लिए बहुत बड़ा आघात था। वे टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने मित्र की स्मृति को अमर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने संगीतकार का नाम, यानी कि अपना नाम राम लक्ष्मण को जारी रखा, और ये

केवल नाम नहीं था बल्कि दोस्ती के प्रति श्रद्धांजलि थी। राम लक्ष्मण ने अपने करियर की शुरुआत मुख्यतः मराठी फिल्मों से की। उनकी धुनों में लोक संगीत की मिठास और भारतीयता का अद्भुत संगम था। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा लोगों की नजर में आने लगी। उनकी धुनें सरल, मधुर और दिल को छू लेने वाली होती थी। उनका संगीत शोर नहीं करता था बल्कि भावनाओं को धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचा देता था।

इस मीठे से गाने के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में, और हम बात कर रहे हैं सुरों की जोड़ी राम लक्ष्मण के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी फिल्मों में उनके प्रवेश के बारे में। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान बनने लगी फिल्म एजेंट विनोद से। फिल्म का गीत हरि ओम हरि काफी लोकप्रिय हुआ। इस गीत ने साबित कर दिया कि राम लक्ष्मण आधुनिक शैली में भी आकर्षक संगीत दे सकते हैं, लेकिन असली सफलता अभी बाकी थी। राम लक्ष्मण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनका साथ जुड़ा राजश्री प्रोडक्शंस से। राजश्री की फिल्मों में पारिवारिक भावनाएं, प्रेम, संस्कार और भारतीय संस्कृति प्रमुख होती थी। राम लक्ष्मण का संगीत इस माहौल के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। फिर आई वह फिल्म जिसने इतिहास बदल दिया, और ये केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय युवाओं की भावनाओं का उत्सव बन गई। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। जी हाँ, फिल्म के गीत दिल दीवाना, कबूतर जा जा जा, आते जाते, मेरे रंग में रंगने वाली आज भी सदाबहार माने जाते हैं। इन गीतों ने सलमान खान और भाग्यश्री को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। राम लक्ष्मण के संगीत की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। उनकी धुनों में भारतीय लोक संगीत की मिठास, मधुर ऑर्केस्ट्रेशन, भावनात्मक गहराई, सरल लेकिन यादगार धुनें, पारिवारिक संवेदनाएं, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था। उनके गीतों में शोर कम और आत्मीयता अधिक स्पष्ट होती थी, और सच्चा संगीत वही है जो दिल को छू ले। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया से ये गीत।

श्रोतो, हम बात कर रहे हैं मशहूर सुरों की जोड़ी राम लक्ष्मण के बारे में और कार्यक्रम चल रहा है आज के कलाकार। राम लक्ष्मण ने भारतीय सिनेमा को केवल गीत नहीं दिए बल्कि भावनाओं की भाषा दी। उनका संगीत हमें याद दिलाता है कि प्रेम सरल हो सकता है, परिवार सबसे बड़ा धन है और मधुरता कभी पुरानी नहीं होती। उनकी धुनें आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। वर्ष 2001 में विजय पाटिल यानी कि राम लक्ष्मण की इस जोड़ी का निधन हो गया और उनके जाने से भारतीय संगीत जगत में गहरा शून्य पैदा हो गया। लेकिन कलाकार, वास्तव में असली कलाकार कभी मरता नहीं है, वे अपनी कला में जीवित रहते हैं और आज भी उनके गाने जब लोगों में सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है मानो राम लक्ष्मण की धुनें फिर से जीवित हो उठी हों। धुनें समय से नहीं बल्कि भावनाओं से अमर होती हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां संगीत बोलता है और राम लक्ष्मण भारतीय संगीत के उन महान रचनाकारों में से थे जिन्होंने सफलता में सौंदर्य खोजा। उन्होंने अपने संघर्ष, दर्द और भावनाओं को ऐसी धुनों में बदला जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएंगी। उनका संगीत और उनकी संगीत की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची कला कभी समाप्त नहीं होती। समय बदल सकता है, संगीत की शैली बदल सकती है, लेकिन दिल से निकली धुनें हमेशा जीवित रहती हैं। और अंत में जाते जाते बस हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, कुछ अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, पर कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी धुनों में अमर हो जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे कल एक नए सफर में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

स्वागत है श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको कुछ मीठे मीठे नगमे और साथ ही बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी समसामयिक जो विषय होते हैं उन पर। तो आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं, जिस पर हम आपसे बात करेंगे, वह है जैव विविधता दिवस। जी हाँ, जैव विविधता, क्योंकि आज यानी कि 22 अप्रैल को हम सभी मना रहे हैं जैव विविधता दिवस। धरती की हर सांस में बसी है जैव विविधता। प्रकृति केवल हमारे पूर्वजों की धरोहर नहीं है श्रोताओं, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है। जब सुबह पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता है, खेतों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, नदियों में मछलियां तैरती हैं और जंगलों में अनेक जीव स्वतंत्र विचरण करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी कितनी जीवंत और सुंदर है। यह सुंदरता किसी एक जीव या वनस्पति से नहीं, बल्कि असंख्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की विविधता से मिलकर बनी है। और इसी विविधता को तो कहते हैं जैव विविधता। हर वर्ष 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है लोगों को प्रकृति के महत्व, पर्यावरण संरक्षण तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। जैव विविधता केवल जंगलों या वन्य जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। भोजन, दवाइयां, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और जलवायु संतुलन, सब कुछ जैव विविधता पर निर्भर करता है। आज आधुनिकता, औद्योगिकरण और बढ़ते प्रदूषण के कारण जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। अनेक पीढ़ियां तो जैसे विलुप्त हो चुकी हैं और कई विलुप्ति के कगार पे हैं। और यदि समय रहते हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो मानव अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। इसीलिए जैव विविधता दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने का संकल्प है।

जी हाँ श्रोताओं, चित्रकार की तारीफ तो करते ही बनती है, क्योंकि ये जैव विविधता, यदि हम इस पर गौर से ध्यान दें, ये अलग अलग तरह के जीव, पक्षी, वन, धरती, वायु, आकाश, ये सब उस चित्रकार ने ही तो बनाए हैं, और इस चित्रकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्रोताओं, यदि बात की जाए जैव विविधता दिवस के इतिहास के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया, और इसके बाद से ही 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। इस दिन का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, विलुप्त तो होती प्रजातियों की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना। यदि जैव विविधता के महत्व के बारे में की बात की जाए, तो श्रोताओं, मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति पर ही तो निर्भर है। भोजन, कपड़े, दवाइयां और ईंधन सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। यदि जैव विविधता समाप्त हो जाए तो जीवन की कल्पना भी संभव है ही नहीं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जीव जंतु खाद्य श्रृंखला को संतुलित करते हैं। यदि किसी एक प्रजाति का भी हम देखें विनाश हो जाए, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए जैव विविधता का पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्व है। अनेक तरह की महत्वपूर्ण दवाइयां वनस्पतियों और जीवों से ही हमें प्राप्त होती हैं। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों प्रकृति पर ही तो निर्भर हैं। कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन और वानिकी जैसे अनेक उद्योग जैव विविधता पर ही निर्भर करते हैं। भारत में प्रकृति को पूजनीय माना जाता है। नदियां, वृक्ष और पशु पक्षी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। तो देखा जाए तो जैव विविधता का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक

महत्व भी भारत में बहुत ज्यादा है। अब बात चली है भारत की, तो भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदर वन, थार मरुस्थल और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। भारत में ही लगभग 47,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं और 90,000 से अधिक पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र यदि उनकी बात की जाए तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ का रण क्षेत्र है। लेकिन ठीक है, हम बात कर रहे हैं जैव विविधता के बारे में, इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन हर चीज को किसी न किसी चीज से खतरा तो होता ही है और हमारी जैव विविधता के लिए भी कुछ कारण हैं जो कि खतरे का कारण बने हुए हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता कहीं ना कहीं डगमगा रही है। और ये कारण कोई अपने आप बने कारण नहीं, बल्कि ये मनुष्य की देन है। और ये कारण है वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शिकार और तस्करी, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग। श्रोताओं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से अनेकों जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। अब ऐसे में जब उनके खुद के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो उनकी जो जनसंख्या है वो कम होना निश्चित है। इसके अलावा जब पेड़ों की कटाई हो रही है तो जल, वायु और भूमि प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के लिए घातक ये बनता जा रहा है। अब जहां पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बढ़ रही है और उसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे अनेक प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अवैध जो शिकार है उसके कारण कई दुर्लभ जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा मनुष्य की प्रकृति को एक सबसे बड़ी देन है प्लास्टिक। बनाया तो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए था, लेकिन ये हम लगातार दिन प्रतिदिन हर समय प्रकृति को देन दिए जा रहे हैं, क्योंकि यूज करते हैं, फेंक देते हैं, यूज करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। समुद्री जीव प्लास्टिक निकल लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और इसकी वजह से समुद्री जीवों का जीवन जो है वो संकट में है। तो श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बहुत ही गंभीर समसामयिक विषय जैव विविधता पर, क्योंकि आज है जैव विविधता दिवस। हम सभी मिलकर मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई यानी कि आज के दिन। तो कार्यक्रम जारी है श्रोताओं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

जी हाँ श्रोताओं, हम कितनी भी तरक्की कर लें अपने जीवन में, लेकिन दिल वही फुर्सत के क्षण ढूंढता है, चाहे रात हो चाहे दिन। हमें फुर्सत के वो दिन चाहिए, फुर्सत की वो रात चाहिए जब हम आराम से बैठे हैं प्रकृति के बीच में, लेकिन ये तभी संभव है जब हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। क्योंकि यदि मानव चाहे कि केवल वो तरक्की करे और प्रकृति पीछे छूट जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति और मानव का जीवन, ये दोनों आपस में एक साथ चलते हैं। जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक का खराब हो जाना दूसरे को चला नहीं सकता, ठीक उसी तरह से मानव का जीवन भी प्रकृति के समकक्ष ही चलता है। और यदि मानव ये उम्मीद रखे कि हम केवल अपना भला कर लें और प्रकृति का जो है दोहन करते रहें और प्रकृति को पीछे छोड़ दें, तो हम अपना जीवन काट लेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि प्रकृति के बिना मानव का जीवन कहीं भी किसी भी रूप में संभव ही नहीं है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं जैव विविधता के बारे में, तो इसके संरक्षण के भी उपाय हैं जो कि मानव दिन प्रतिदिन जो डेली गलतियां करता है उनको अगर यदि ना करें, तो एक सरल से तरीके से ही हम इस जैव विविधता को, जो हम जागरूकता को फैला रहे हैं, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि वृक्षारोपण, आए दिन हमें अपना घर बनाने, हमें सड़क पर चलने, हमारे घर बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है कि ये पेड़ बीच में आ रहा है, इसे काट देते हैं। घर बना रहे हैं, ये पेड़ बीच में आ रहा है, इसे काट देते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि पेड़ और हमारा घर, हमारा बाहर का एरिया या कोई भी जगह है, वहां पर हम ऐसा सामंजस्य बिठाएं कि पेड़ भी जीवित रहे और हम भी उसी के नजदीक आसपास जीवित रहें। तो सबसे बड़ी बात है, पेड़ों की कटाई को तो हमें रोकना ही होगा, इसके साथ ही वृक्षारोपण भी हमें करना होगा। जितना हो सके उतना घर के आसपास किसी भी एरिया में, जहां आपको लगता है जो रास्ते में नहीं आता है, सड़कों पर नहीं आता है, इस तरह के एरिया में आप वृक्षारोपण करिए। इस समय हम सभी देख रहे हैं कि आगरा का क्या हाल है, हीट वेव के अलर्ट पर है हम, तो ये सब आखिर क्यों है? हम औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रकृति जो है उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण, हमें ये करने की सबसे बड़ी जरूरत है, और सबसे जो बड़ी जरूरत है प्रदूषण को रोकने की, वो है प्लास्टिक को कम करने की। प्लास्टिक ने तो जैसे हमारे साथ साथ इन नदियों, प्रकृति, जीवन, जो ये धरती है, इन सब की सांसों को तो कहीं ना कहीं रोक ही दिया है। ये प्लास्टिक जितना हमारे उपयोग की काम की चीज है, ये प्रकृति के उतने ही खिलाफ है। तो इस प्रदूषण को हमें रोकना होगा। इसके अलावा वन्य जीव का हमें संरक्षण करने में अपनी सहायता करनी होगी। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या को हमें बढ़ाने के लिए जागरूक होना चाहिए कि हम इन जीवों के जीवन को बचा सकें और इनका संरक्षण कर सकें। जल स्रोतों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जैसा कि इस समय हम लोग सभी देख रहे हैं किस तरह से हम गर्मी से त्राही माम कर रहे हैं, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये हमें इन्हीं दिनों में पता चलता है। तो जल स्रोतों को आप स्वच्छ रखें, अपने घर के बाहर भी पानी की व्यवस्था करें, और जिससे आप बहुत से जीव हैं जिनके जीवन को आप इस समय गर्मी में बचा पाएंगे। अगर देखा जाए तो श्रोताओं, जैव विविधता हो या किसी भी तरह के प्राकृतिक क्षेत्र हो या कोई भी हम मुहिम चलाते हैं, तो उसमें विद्यार्थियों की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि विद्यार्थी समाज के भविष्य होते हैं। वे छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए, तो बच्चे बड़े होने तक बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पेड़ लगाइए, जल बचाइए, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता, तो ये हमें सबसे ज्यादा सिखानी होगी। क्योंकि आजकल बच्चे प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं, वे पशु पक्षी के प्रति संवेदनशीलता को भूलते ही जा रहे हैं। और इसके अलावा पर्यावरण संबंधी अभियानों में

हमें बच्चों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिलवाना चाहिए ताकि वे प्रकृति से जुड़ें। जी हाँ, धरती का श्रृंगार है वन, जीवन का आधार है वन। पक्षी पशु और नदियों की धारा सब में बसता प्रकृति का प्यारा। फूलों की खुशबू कहती है जीवन में हरियाली रहती है। पेड़ों में मिलती शीतल छांव इनसे ही मुस्कुराता है गांव। यदि ये जंगल सब कट जाएंगे तो बादल कैसे फिर आएंगे। सूख जाएंगे नदी किनारे, रोएंगे फिर खेत बिचारे। आओ मिलकर शपथ उठाएं धरती को फिर स्वर्ग बनाएं। हर जीवन का सम्मान करें, हर जीव का सम्मान करें और जैव विविधता का ध्यान रखें। जी हाँ श्रोताओं, हमें समय है कि अब हम अभी भी बहुत समय है कि हम जाग जाएं और प्रकृति के तरफ देखें, इसे निहारें और अपने जीवन में वो फुर्सत के क्षण कहीं ऐसा ना हो कि हम हमेशा के लिए खो दें। तो फुर्सत में बैठने के लिए हर कोई चाहता है, तो उन फुर्सत के पलों के लिए आप प्रकृति को बचाएं। और भारतीय संस्कृति में तो प्रकृति को जैसे देवतुल्य माना गया है। पीपल, बरगद, तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। गंगा, यमुना जैसी नदियों को माँ कहा जाता है। लेकिन ध्यान दिया जाए तो जिनको हम माँ कह रहे हैं वे ही आज के समय में उनकी ही स्थिति बहुत खराब है। नदियों की, हमारी भारतीय नदियों की स्थिति बहुत ही विचारणीय है। हम जहाँ कहीं जाते हैं पहाड़ों पर या नदी किनारे, वहाँ जाते हैं पूजा पाठ के नाम पर, कितना असंख्य कचरा हम उसमें जाकर फेंक आते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा धार्मिक कार्य है। ये सब बिल्कुल गलत है। अंधभक्त ना बने, धर्म में विश्वास करिए लेकिन अंधभक्ति को बंद करिए। पूजा पाठ के नाम पर प्लास्टिक कचरा या कुछ भी कचरा है जिसको आप प्रकृति के गोद में फेंकने की कोशिश करते हैं, उसे ना करें। उसको रिसाइकल करने की कोशिश करें या उसको ऐसे नष्ट करने की कोशिश करें कि वो दोबारा प्रकृति की गोद में चली जाए, जिससे प्रकृति का प्रदूषण भी ना हो, प्रकृति प्रदूषित भी ना हो और वो सामान जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट भी हो जाए एक प्राकृतिक तरीके से। श्रोतो, महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सबकी आवश्यकताएं आप देखें प्रकृति पूरी कर रही है, लेकिन हमारे लालच को आखिर कब तक ये प्रकृति पूरा करेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लालच पूरा करते करते ये प्रकृति एक दिन बिल्कुल ही समापन की ओर हो जाए। पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, प्रकृति बचेगी तो भविष्य सजेगा। धरती माँ का यही संदेश, हरियाली से बनेगा देश। जो प्रकृति का मान करेगा वही सच्चा इंसान कहलाएगा। तो श्रोताओं, अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि हर जीव की है। यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली सभी पीढ़ियां भी इस सुंदर धरती का आनंद ले सकेंगी। आज आवश्यकता है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए। केवल सरकारें या संस्थाओं के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है और उसके संरक्षण के लिए उतना ही हमें समर्पण भी दिखाना चाहिए। जैव विविधता प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर है। ये केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो तभी तो मानव सभ्यता सुरक्षित रह पाएगी। हरियाली का दीप जलाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं, जैव विविधता रहे सुरक्षित, ऐसा सुंदर विश्व बनाएं। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसके अंतर्गत आज हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जैव विविधता के बारे में, उसके महत्व को जाना, उसको जाना परखा और हमने जाना कि किस तरह से हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। मिलेंगे कल एक फिर से समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे आपसे और सुनवाएंगे आपको कुछ मीठे गीत। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जी जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है

0: एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही।
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है,
1: जी सुना तो है।
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है,
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है,
0: जी
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षावन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की

0: अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया।

0: इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना।
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो

0: स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: आजी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
3: हाँ हाँ
2: ये देखो
3: देखो देखो कितना छोटा था, नहीं ये पौधा कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है।
3: हाँ।
2: मेरा छोटा सा बच्चा।
1: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
2: हाँ।
3: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
1: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रहे हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
1: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
1: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता,

0: यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर।

जैव विविधता बचाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ। हर जीव का है सम्मान, तभी सुरक्षित होगा इंसान। पेड़ पौधे और वन्य जीव प्रकृति के हैं सच्चे अतीव। धरती की यही पुकार, जैव विविधता का करो सत्कार। प्रकृति का मत करो नाश, यही है जीवन की आस। हरियाली होगी जब कायम, तब खुशहाल रहेगा जीवन। वन बचेंगे, जीव बचेंगे, तभी हमारे सपने सजेंगे। जंगल है धरती की शान, इनसे ही है जीवन महान। जैव विविधता का करो मान, यही है मानव की पहचान। प्रकृति से मत तोड़ो नाता, यही जीवन का सच्चा दाता। धरती माँ का रखो ध्यान, जैव विविधता है वरदान। हरा भरा हो हर संसार, यही है प्रकृति का उपहार। जल, जंगल और जमीन बचाओ, अब आने वाला कल सुरक्षित बनाओ। जब जब पेड़ लगाएंगे, तब तब खुशियां पाएंगे। जैव विविधता की रक्षा करो, प्रकृति से सच्चा प्रेम करो। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम नए तराने की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से ये गीत, जिसमें अपनी आवाज दी है अदनान सामी में, और संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

श्रोता भी सुन रहे थे इस कव्वाली को फिल्म बजरंगी भाईजान से अदनान सामी की आवाज में। कार्यक्रम की अगली कव्वाली आप सुनेंगे फिल्म जोधा अकबर से एआर रहमान की आवाज में। संगीत निर्देशन भी एआर रहमान का है और इस कव्वाली को लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नई तरहने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम में 196.1 मीटर पर कार्यक्रम अभी जारी है श्रोताओं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम नए तराने में। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म रॉकस्टार से एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाजों में। संगीत निर्देशन है एआर रहमान का।

0: और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप

0: रूप क्वाड़ विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड़ के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24

0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
1: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.D.

0: रहेगा। रियासती सनअती तरक्की के वजीर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कल अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनअती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खित्ता कार्गो का एक अहम मरकज बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की तरक्की करें। रियासती हुकूमत ने कल रियासती सरकारी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना दीपक कुमार ने सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से अदा किया जाएगा। इससे कबल रियासती मुलाजमीन को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए मिलेगा। रियासती हुकूमत ने 1/5 रुकनी पसमानदा तबकाती कमीशन की तकरीरी की, जिसकी सदारत रियासती हुकूमत कर रही है और मेंबरान की तकरीरी की है। इस कमीशन की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: मर्दमशुमारी 2027 के तहत रियासत के खुद मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज घरों की गिनती से होगा। आज से मर्दमशुमारी के लिए मुकर्र करदा शुमार कुंदगान घर घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इस सिलसिले में मर्दमशुमारी करने वाले हापुड़ में घर घर जा रहे हैं। शुमार कुंदगान मकानात को मुस्तकिल नंबर तफवीज कर रहे हैं, जिसके बाद वो मर्दमशुमारी के मकामात पर खानदान की तफसीलात जमा करेंगे और उन्हें डिजिटल तौर पर दर्ज करेंगे। मर्दमशुमारी 2027 के एक हिस्से के तौर पर रियासत में 7 मई खुद गिनती का अमल जारी हुआ था, जो कल खत्म हुआ। रियासती मर्दमशुमारी के डायरेक्टर और चीफ मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने कहा कि अगले मरहले में आज से शुरू होने वाले मर्दमशुमारी कारकुन घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने खुद शुमारी के तहत पोर्टल पर अपनी मालूमात दर्ज की है, उन्हें अपने घर जाने पर 11 हिंसों का कोड फराहम करना होगा, जो मालूमात की तस्दीक करेगा। यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी बनाया जाएगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज किया जाएगा, जिससे तलबा में मसावात और नज्म व जब्त को फरोग मिलेगा। रियासत शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात से दो चार है। जिला बांदा गुज़िश्ता रोज मुल्क के गर्म तरीन जिले से रहा। दीगर अजला में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। हमारे नामा निगार की इतला है कि रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं शदीद गर्मी के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाख जी ने आज से सभी बोर्ड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ
3: आगरा केंद्र का प्रसारण मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। अब समय है हमारी बहनों के अपने कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को ललित वत्स का नमस्कार। बहनों, आजकल भयंकर गर्मी पड़ रही है और ऐसे में यदि कहीं भी थोड़ी सी भी हरियाली दिखाई देती है तो वे हमारे मन को सुकून देती है। यदि हम कहीं दूर तक पैदल जा रहे हैं और एक हरा भरा वृक्ष दिखाई देता है तो यकीन मानिए हमारे कदम खुद ब खुद तेज हो जाते हैं।

उस पेड़ की छाया के लिए। हम यदि कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर जहां खूबसूरती हो, हरियाली हो। इस धरती पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर और जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। यही इस प्रकृति की खूबसूरती है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। बहनों, हर वर्ष आज ही के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य कारण लोगों को प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशाल हस्त हाथी तक, रंग बिरंगी फूलों से लेकर बड़े बड़े जंगल तक, सब इन जैव विविधता का ही हिस्सा है। यदि मधुमक्खियां ना होती तो कई पौधों में फल और फूल ही नहीं लग पाते। यानी छोटे से छोटे जीव भी प्रकृति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज प्रदूषण, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण कई जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने की आदत को अपनाना चाहिए। यदि हमारी प्रकृति सुरक्षित है, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है, तभी हमारे पशु पक्षी सुरक्षित हैं, नहीं तो वे भी अपना आशियाना कहीं और खोजने को निकल पड़ेंगे।

बहनों, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और ऐसे में उनकी रोज कोई ना कोई नई फरमाइश बनी रहती है। कभी चटपटा तो कभी कोई ड्रिंक। तो आज हम आपको बताते हैं हेल्दी और चटपटा नाश्ता आपके बच्चे के लिए, सूजी की कटलेट। मैंने सूजी की कटलेट बनाने के लिए गुनगुने पानी से सूजी को अच्छी तरह से गूंथ लें, लेकिन सूजी को गूंथने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दें, एक चम्मच रिफाइंड डाल दें और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दें, और यदि हरा धनिया डाल देंगे तो स्वाद और अच्छा बढ़ जाएगा। और ये सब चीज़ें डालकर आटे को गूंथ दें और इसके बाद 15 मिनट तक सूजी को फूलने के लिए रख दें। फिर इसमें फिल करने के लिए उबले आलू की फिलिंग तैयार करें। उबले आलू में हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार और लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार ही डालिए। खटाई मिलाकर इसकी एक पिट्ठी तैयार कर लें। फिर सूजी की छोटी सी लोई लेकर, जो आपने आटा तैयार किया था उसका, उसकी छोटी सी लोई लेकर इसमें आलू की पिट्ठी भरकर थोड़ा चपटा सा करके हाथ में, और उसमें आलू भर दें जो आपने मसाला बनाया था उसका, और जब ये, और फिर इसको एक चपटा आकार दे दें। फिर जिस तरीके से आप इडली बनाते हैं, भाप लगा लीजिए इसको, थोड़ा सा भाप पे पकने दीजिए किसी भगोने में, या तो पानी रख के और उसके ऊपर छलनी रख दीजिए और स्टीम कर लीजिए यानी। और जब स्टीम हो जाए, फिर एक कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल, तेल ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा तेल लीजिए और उसमें थोड़ी सी राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हल्का सा हल्दी पाउडर और चाट मसाला डाल के ये सारी जो कटलेट आपने बनाए हैं वो हल्का सा, उनको थोड़ा सा क्रिस्पी होने दीजिए, तब तक भुने। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। हमें उम्मीद है ये नाश्ता आपके बच्चों को बहुत बहुत पसंद आएगा। बहनों, बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।

0: बहनों, आज का समय डिजिटल युग का दौर है। आज बिना मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप के तो लगता है कि आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। आजकल घर बैठे बैठे ही व्यक्ति खरीदारी कर लेता है, सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। यही कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। आज आपको कपड़े खरीदने हैं, किताबें, खाना, शिक्षा, यहाँ तक कि घर से बने उत्पाद भी ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। यानी लाइफ थोड़ी इजी होती जा रही है। कोविड महामारी के बाद लोगों की सोच में बहुत अधिक बदलाव आया है। लोगों ने घर बैठे बैठे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन बिजनेस में कम लागत में काम शुरू किया जा सकता है। समय और जगह की कोई समस्या नहीं होती। ग्राहक देश विदेश तक मिल सकते हैं। डिजिटल पेमेंट से लेन देन भी आसान हो जाता है। तकनीक का सही सही उपयोग हमें नए अवसर देता है। यदि मेहनत, ईमानदारी और नई सोच हो तो ऑनलाइन बिजनेस आपकी सफलता का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। बहनों, आपसे बहुत सारी बातें भी हो गई और आपको प्यारा सा गीत भी सुनवा दिया, और अब हम आपको सुनवाते हैं स्वीटी गोस्वामी से काव्य पाठ।
1: बहनों, प्रस्तुत है आपके समक्ष अपने मीठे मीठे रिश्तों की मनोहार सी प्रतिक्रिया, जिसका शीर्षक है रिश्ते ये कैसे कैसे।

रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े तो कुछ तेरे मेरे जैसे हैं। रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, कुछ लीटर कुछ किलो, कुछ पाउच कुछ सैशे हैं, कुछ सच्चे कुछ झूठे, कुछ गांठ वाले कुछ जुड़े कुछ टूटे, कुछ पथरीले कुछ कंकरीले, कुछ उतले कुछ समतल और कुछ पानी के बुलबुले जैसे हैं। रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, आज बनते हैं कल बिगड़ते हैं, आज बनते हैं कल बिगड़ते हैं, इसी खींचतान में कुछ रिश्ते बदसूरत होते तो कुछ संवरते हैं। कभी कुछ लू के थपेड़े झुलसा जाते हैं रिश्तों को, कभी कुछ लू के थपेड़े झुलसा जाते हैं रिश्तों को, कभी कुछ रोशनी के कण सुलझा जाते हैं रिश्तों को। कुछ तीखे हैं कुछ फीके हैं, कुछ राम रस तो कुछ धतूरे सरीखे हैं। रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, कुछ रिश्ते तन के हैं कुछ मन के हैं, कुछ हृदय के कुछ चितवन के हैं। रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, कोई दर्दीले हैं कोई सजीले हैं, कोई आरामदायक तो कोई फांस या कीले हैं। कोई दर्दीले हैं कोई सजीले हैं, कोई आरामदायक तो कोई फांस या कीले हैं। कुछ रिश्ते मकड़ी के जाल से हैं तो कुछ रिश्ते तूफानों में ढाल से हैं। कुछ रिश्ते कमजोर हैं कुछ में प्रीत की डोर है। कुछ बर्फ से हैं कुछ रेत से हैं, तो कोई अंधकारमयी रात्रि और कोई प्रात बेला और श्वेत से हैं। सिर्फ ईंटों के प्रासादों से कुछ नहीं मिलता, बना सकते हो तो रिश्तों की चट्टाने बनाओ। जैसे और मनाते हैं त्योहार, एक त्योहार रिश्तों का मनाओ। ये रिश्ते कैसे कैसे हैं, कुछ तेरे मेरे जैसे हैं, कुछ मस्त कुछ बेचैन कुछ खामोशी में सन्नाटों जैसे हैं। रिश्ते ये कैसे कैसे हैं, रिश्ते ये कैसे कैसे हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी दूसरी कविता, जिसमें हमारा मन ना जाने कितनी उमंगें और तरंगों को समेटे हुए है। मेरी कविता का शीर्षक है मयूर पंखी मन। इंद्रधनुष से झीने झीने स्वप्न मुझे मौन निमंत्रण देते हैं। उठती गिरती सी इन बावरी उमंगों को हम बेपरवाह अपनी मुट्ठी में समेटे हैं। तभी वहीं कोने में खामोश झांकता सा सत्य खड़ा है। वो बोला, मैं अविचल हूं, क्या कोई पर्वत भी है जो मुझसे बड़ा है। मेरे मयूरपंखी मन पर छितरे छितरे स्वप्न अपने पंखों को अपने अंदर सकुचाते हैं। इस पहाड़ से सत्य को देखकर वो बेचारे डर जाते हैं। छोटी छोटी ही सही खुशियां पर सागर की लहर में वो रजकड़ सी आती हैं और वो अपने इस भाव में कुछ संदेश हम तक पहुंचाती हैं। माना जीवन संघर्षों से पूरित है, किंतु सपनों की कुसमत सुरभित सपनों की साख को अपने जीवन कुटिया में बस जाने दे। हर स्वप्न सत्य नहीं होता ये सच है, किंतु क्या बुरा होगा अगर दो पल कुछ इंद्रधनुषी स्वप्न नयनों में सज जाने दे। और अब मेरी अगली कविता है आवाज। इसमें हमारे अंतर्मन की आवाज का ताना बाना है। अत्याचारों को रोनने के लिए तत्पर, झंझावतों को काटती हुई, जुल्मों को चीरती हुई, अपने शत्रुओं को हतोत्साहित करने को व्याकुल और उग्र, मैं बार बार मुख म्यान से बाहर अधरों तक आती हूं, लेकिन कोई है जो मुझे रोकता है। कौन? शायद वो आप या आप तो नहीं, या फिर कोई मेरे अपने ही तो नहीं जो मुझे बाहर आने देना नहीं चाहते। पर क्यों, क्या जान सका कोई कौन हूं मैं आवाज हूं, और आज हर पल दिल में उठने वाली हूक हुंकार और दर्द से रोती बिलकती जिंदगियों की गवाह एक खामोश सा राज हूं। बहुतों ने चाहा मैं झुक जाऊं, रुक जाऊं, अपने घुटने टेक दूं, मगर मैंने भी हार नहीं मानी। मुझे भी खुलकर जीने का हक है। मैंने अंधविश्वासों की बेड़ियों को काटने का, पुरानी मान्यताओं को बदलने का बीड़ा उठाया है। मैंने अपने विचारों को तूफान बनाया है। मुझे विश्वास है कि किसी रोज मेरी आवाज को सुनेगा वो विस्तृत आकाश, ये बाहें फैलाए धरती, और एक जलजला आएगा। बेकार की कोशिशें मत करो तुम मेरी इस आवाज को दबाने की, क्योंकि आवाज को कोई नहीं दबा सकता, ना आप। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी चौथी कविता, जिसका शीर्षक है जिंदगी क्या है। वैसे तो जिंदगी के अपने अपने मायने हैं अपनी अपनी नजरों में, लेकिन चंद शब्दों में मैंने कुछ लिखा है कि जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है, एक सुखद सलोना सपन है।

0: जिंदगी जिसमें गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए। बिखेरती है ये अनगिनत कांटे राहों में, लेकिन कांटों भरी राह में भी खुद को आजमाना चाहिए, खुद को आजमाना चाहिए। जिंदगी एक तजुर्बा है, तावीज है रिश्तों का, इसके अवसादों में माधुरता का गोता लगाना चाहिए। जिसमें गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए, जिसमें गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए। कोई भयानक भय भी इसे विचलित कर नहीं सकता, कोई भयानक भय भी इसे विचलित कर नहीं सकता। तन पर पड़े चाहे लू के थपेड़े, मगर हमें अपने पथ पर पग बढ़ाना चाहिए। जिसमें गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए, जिसमें गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी सुख की दो पल की संगनी, जिंदगी सुख की दो पल की संगनी और दुख की चिर सहचरी। इस सहचरी के बोझिल परों को हौसलों से कुतर देना चाहिए, इस सहचरी के बोझिल परों को हौसले से कुतर देना चाहिए। यूं तो सब दौड़ना चाहते हैं लंबी चौड़ी सड़कों पर, यूं तो सब दौड़ना चाहते हैं लंबी चौड़ी सड़कों पर, कभी इन तंग गलियों से भी गुजरना चाहिए, कभी इन तंग गलियों से भी गुजरना चाहिए। चाहे लाख मुश्किल डगर है, चाहे लाख मुश्किल डगर है, मगर मन विचलित न करना चाहिए। एक सुखद सलोना सपन है जिंदगी, जिसमें गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए, गमों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी स्वीटी गोस्वामी से काव्य पाठ। बहनों, आज हमारे साथ हैं हमारी सखी माधुरी जी। माधुरी जी, जरा बताइए कि ये गर्मी क्या कह रही है?
2: ललित जी, ये गर्मी कह रही है कि जब तक भी जरूरी आपको काम ना हो, आपको बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और जब तक जरूरी काम नहीं है तब तक घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें।
1: माधुरी जी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जरूरी काम होने पर भी हमारा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि अरे भाई कल हो जाएगा ये काम,
2: बिल्कुल
1: कल हो जाएगा।
2: गर्मी इतनी है कि घर से निकलने का इच्छा नहीं हो रही है।
1: हाँ, और मुझे लगता है कि घर से बाहर निकलें यदि तो बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए हमें।
2: जी बिल्कुल, अगर घर से हम बाहर निकलते भी हैं तो हमें पहले चश्मा लगाना चाहिए, सर ढककर निकलना चाहिए, हाथ पैरों को बिल्कुल अच्छे से कवर करें।
1: हाँ, क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज धूप है।
2: और पानी की बोतल तो साथ लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पानी इस समय ये समझ लीजिए कि एक एक बूंद हमारा जीवन हो रही है। कब प्यास लगाती है इतनी गर्मी में पता नहीं चलता।
1: और माधुरी जी, खाने पीने के बारे में आप क्या कहेंगी भाई?
2: खाने पीने की जहाँ तक बात है कि इस समय हमारे मार्केट में जो रसीले फल हैं, जो पानी की कमी को पूरा करते हैं, वो उपलब्ध हैं, जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा, आम। तो हमें ये फल जो है अधिक से अधिक लेने चाहिए। इसके अलावा जो तली भुनी चीजें हैं उनको इस समय अवॉइड करना चाहिए, उन्हें बहुत ही कम लेना चाहिए, यानी कि ना के बराबर लेना चाहिए।
1: और हमारे बच्चों का क्या होगा जो शाम होते ही कहने लग जाते हैं मम्मी चलो, हाथ पकड़ के कहते हैं मार्केट चलिए,
2: लेकिन हमें उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट करना होगा। हमें इन रसीले फलों से बनी ही कुछ रेसिपीज जो है वो हमें उन्हें खिलानी चाहिए, जैसे कि मैंगो शेक हुआ, तरबूज ड्रिंक हुए, उनका मन हमें इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना चाहिए।
1: हाँ, बहुत सही कहा माधुरी जी आपने। और यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए, है ना
2: जी? बिल्कुल।
1: और वैसे जहां तक संभव हो धूप में ना निकले, तभी आप छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं
2: जी।
1: बहनों, यदि आप तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो आपके अपनों को आपकी चिंता होती है और वह ये कह उठते हैं,

बहनों, बाल स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। काले घुंघराले बाल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उनकी देखभाल उतनी ही खास होती है। कई लोग सोचते हैं कि कर्ली हेयर संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन सही तरीके अपनाए जाएं तो यही बाल आपकी सबसे खास और अलग पहचान बन सकते हैं। बहनों, घुंघराले बालों को ज्यादा रगड़कर नहीं सुखाना चाहिए, इससे बाल उलझ सकते हैं और रूखे दिखने लगते हैं। मुलायम तौलिए से और हल्के हाथों से बालों को सुखाना चाहिए। कर्ली बालों को सामान्य बालों की तुलना में ज्यादा नमी की जरूरत होती है, इसलिए हेयर क्रीम, सीरम या प्राकृतिक तेलों का उपयोग बालों को आपके मुलायम बनाए रखता है। बालों की देखभाल यदि अच्छी तरह से की जाए तो बाल देखने में तो खूबसूरत लगेंगे ही, आपकी सुंदरता को भी बढ़ा देंगे। काले घुंघराले लहराते बालों को देखकर किसी का भी दिल ये कह उठेगा,

बहनों घर संसार कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी सखी ललित वत्स को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

बहने अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर मेधा सचदेवा से के गाए हुए कुछ चयनित भजन। प्रस्तुत है पहला भजन जिसके बोल हैं कौन तम के पार रे।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में कलाकार डॉक्टर मेधा सचदेवा द्वारा गाए हुए चयनित भजन। प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला भजन।

0: has increased. Mr. Modi added that India and Cyprus aim to double investment flows again in the next 5 years.
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है. इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं.
0: Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
1: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर

0: कल शिमला एज वेल एज चंबा कांगड़ा कुल्लू हमीरपुर एंड लाहौल स्पीति लीडिंग टू अ स्लाइट ड्रॉप इन टेम्परेचर्स अक्रॉस द स्टेट अकॉर्डिंग टू द मेटीरोलॉजिकल सेंटर शिमला दिस चेंज इन वेदर इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द सेंटर हैज इशूड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेन अकंपनीड बाय थंडरस्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन सेवन डिस्ट्रिक्ट्स कुल्लू शिमला चंबा ऊना हमीरपुर मंडी एंड बिलासपुर ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स रितेश कपूर आकाशवाणी न्यूज शिमला.
1: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Lene Kerfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21. In 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की. श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना. 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा मतदान 18 जून को. सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से. अब समाचार विस्तार से. भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया. प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है.
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है. पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है. दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है. भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं. इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है.

0: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता

0: सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र का प्रसारण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी शोभा गोटू से राग मिश्र पहाड़ी में गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना विदुषी शोभा गुट्टू द्वारा राग मिश्र पहाड़ी में गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आनंद आश्रम से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है श्यामलाल मित्र का और शब्द रचना है इंदिवर की।

इतनी सुंदर हो, इस नगमे को श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म आनंद आश्रम से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में, फिल्म स्त्री से, जिसमें अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। संगीत निर्देशन है श्री रामचंद्र का और शब्द रचना भरत व्यास की।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसमें संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम की एक खास पेशकश, जिसमें शायरी, अफसाना और मकालों का रंग आप बिखरते देखेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे मकाला कुदरत का बचाव, जिसे प्रस्तुत करेंगे मकबूल निगार अताउल्ला खां। इसके बाद होगा कलामे शायर, जिसमें सीमा शर्मा अपनी चुनिंदा शायरी पेश करेंगी। फिर सुनिएगा दिल को छू लेने वाला अफसाना, जिंदगी के बदलते रंग। और कार्यक्रम के अंत में पेश होगा अफसाना निगार, जिसे लेकर आएंगे सादिया साजिद राशिद।
1: ऑल इंडिया रेडियो आगरा के तमाम सामईन को अताउल्ला अजहर हुसैन का सलाम। मकाला पेश खिदमत है बउनवान कुदरत का बचाव हमारे वजूद के लिए ज़रूरी। मुअज्ज़ज़ सामईन, कुदरत उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जो कि अपने अंदर बहुत सारे मानी व मफहूम को समोए हुए है। कुछ लोग कुदरत को ईश्वर और भगवान से जोड़ कर देखते हैं, इसलिए वो कुदरत की पूजा पाठ भी करते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि कुदरत अपने अंदर वो तमाम बातें और तमाम चीज़ें समेटे हुए है जो कि दुनिया पर बसने वाली तमाम मखलूक के लिए ज़रूरी हैं। कुदरत का बचाव हम सब के लिए फ़र्ज है, तभी बेहतर ढंग से इस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। कुदरत के बचाव के लिए हम किन किन पहलुओं को सामने रखें, आइए इस पर हम एक नज़र डालते हैं। हमारे वजूद के लिए कुदरत में सबसे अहम चीज़ है हवा। अगर इंसानों के लिए सबसे अहम चीज़ है हवा, इंसानों के लिए हवा की सप्लाई बंद हो जाए तो इंसान एक पल के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकता। हवा में भी साफ हवा हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है। हवा की आलूदगी आज दुनिया के अंदर कुदरत के लिए सबसे बड़े चैलेंजों में से एक है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी के मसले से निपटने की खातिर सरकार मुख्तलिफ किस्म के इकदाम कर रही है, तो वहीं हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार का साथ देकर कुदरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और अपनी हवा को साफ शफाफ बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाएं।

साफ हवा में सांस लेने के लिए खुले में शौच से परहेज करें और कूड़ा करकट इधर उधर फैलाने से भी गुरेज करें। ये सब गंदे अफाल अंजाम देने से हवा प्रदूषित होती है और इंसानों जानवरों के लिए मुजिर साबित भी होती है। कुदरत के तहफ्फुज़ के लिए दूसरी अहम चीज़ होती है पानी। पानी कुदरत का वो हसीन तोहफा है जो न सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस है बल्कि नबातात, जमादात और हैवानात की बका के लिए भी पानी एक लाजमी और ज़रूरी चीज़ है। पानी के बगैर दुनिया की खूबसूरती और रंगीनी का तस्वीर नहीं किया जा सकता है और ना ही इंसानी वजूद का। लेकिन आजकल हम पानी का गलत और नाजायज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से पानी की किल्लत के खतरात मंडरा रहे हैं। कुदरत के ताल्लुक से जो जानकार लोग हैं वो लोग तस्लीम करते हैं कि पानी के मामलात पर ही

खुशी थी ओस जैसी, मैं पत्ती और खुशी थी ओस जैसी, सहेली थी फकत वो रात भर की, सहेली थी फकत वो रात भर की, चले थे जोश में घर से सफ़र पर, चले थे जोश में घर से सफ़र पर, सफ़र में याद अब आती है घर की, सफ़र में याद अब आती है घर की। शेर देखिएगा कि अभी से आवलेपा हो गए हम, अभी से आवलेपा हो गए हम, अभी तो इब्तिदा है इस सफ़र की, अभी तो इब्तिदा है इस सफ़र की। दिलों की आह को कब रोक पाई, दिलों की आह को कब रोक पाई, कोई बंदिश कोई दीवार घर की, कोई बंदिश कोई दीवार घर की। मक्ता पेश करती हूँ कि बताना मत हवा को राज सीमा, बताना मत हवा को राज सीमा, उधर कर देगी बातें सब इधर की, उधर कर देगी बातें सब इधर की, डगर पनघट सी जीवन के सफ़र की, मगर चलना है मजबूरी बशर की, मगर चलना है मजबूरी बशर की। एक गज़ल की जो एक उलझन होती है ये अपने ख्वाब अपने फ़र्ज के लिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गज़ल कहे कि एक मक्ता पेश करती हूँ कि आसमां भी पुकारता है मुझे, आशियां भी लुभा रहा है मुझे, आसमां भी पुकारता है मुझे, आशियां भी लुभा रहा है मुझे, आशियां भी लुभा रहा है मुझे, अक्स आखिर कहाँ गया मेरा, अक्स आखिर कहाँ गया मेरा, आईना क्यों छिपा रहा है मुझे, आईना क्यों छिपा रहा है मुझे, मुझमें सूरज उगा के चाहत का, मुझमें सूरज उगा के चाहत का, वो सवेरा सा कर गया है मुझे, वो सवेरा सा कर गया है मुझे, सुबह की सर्द सी फिजा थी मैं, सुबह की सर्द सी फिजा थी मैं, गम का सूरज तपा रहा है मुझे, गम का सूरज तपा रहा है मुझे, मेरे अंदर भंवर भी है कोई, मेरे अंदर भंवर भी है कोई, तुझसे मिलकर पता चला है मुझे, तुझसे मिलकर पता चला है मुझे, मैं रिदा हूँ जो बेवफाई की, मैं रिदा हूँ जो बेवफाई की, क्यों मुसलसल तू ओढ़ता है मुझे, क्यों मुसलसल तू ओढ़ता है मुझे, खूबसूरत से गुल का पैकर हूँ। शेर बतौर ख़ास की खूबसूरत से गुल का पैकर हूँ, अपने अंजाम का पता है मुझे, अपने अंजाम का पता है मुझे, आसमां भी पुकारता है मुझे, आशियां भी लुभा रहा है मुझे। एक गज़ल और कि पूछ मत कल आईने में क्या हुआ, पूछ मत कल आईने में क्या हुआ, अपने जिंदा होने का धोखा हुआ, अपने जिंदा होने का धोखा हुआ, रोज सूरज डूबता उगता हुआ, रोज सूरज डूबता उगता हुआ, वक्त की एक कील पर लटका हुआ, वक्त की एक कील पर लटका हुआ, आ गया लेकर उधारी रोशनी, आ गया लेकर उधारी रोशनी, चांद ने सूरज को है पहना हुआ, चांद ने सूरज को है पहना हुआ, एक बूढ़ा हाथ में लाठी लिए, एक बूढ़ा हाथ में लाठी लिए, एक सूरज शाम को ढलता हुआ, एक सूरज शाम को ढलता हुआ, किरणों ने बोसा लिया रुखसार पर, किरणों ने बोसा लिया रुखसार पर, फूल उठा

आंख को मलता हुआ, फूल उठा आंख को मलता हुआ। और शेर देखेगा कि खूबियां मेरी कोई गिनता नहीं, खूबियां मेरी कोई गिनता नहीं, और जरा सी भूल का चर्चा हुआ, और जरा सी भूल का चर्चा हुआ, आ गई हूँ दूर चलते चलते मैं, आ गई हूँ दूर चलते चलते मैं, आसमां क्यों है वहीं ठहरा हुआ, आसमां क्यों है वहीं ठहरा हुआ, दिल से उसकी याद क्यों जाती नहीं। मक्ता पढ़ती हूँ कि दिल से उसकी याद क्यों जाती नहीं, वो तो सीमा कल है एक गुजरा हुआ, वो तो सीमा कल है एक गुजरा हुआ, वक्त की एक कील पर लटका हुआ, रोज सूरज डूबता उगता हुआ, वक्त की एक कील पर लटका हुआ। एक गजल तरन्नुम में।

तरह। एक गजल और की, परिंदे जैसी कभी थी उड़ान आंखों में, पसर गई है मगर अब थकान आंखों में। परिंदे जैसी कभी थी उड़ान आंखों में, परिंदे जैसी कभी थी उड़ान आंखों में, पसर गई है मगर अब थकान आंखों में। शेर समाप्त फरमाए कि मिली निगाह तो सैराब हो गई आंखें, मिली निगाह तो सैराब हो गई आंखें, रहा ना प्यास का कोई निशान आंखों में, रहा ना प्यास का कोई निशान आंखों में, तुम्हारे हिजर में बेजान है सभी मंजर, तुम्हारे हिजर में बेजान है सभी मंजर।

मंजर तुम्हीं को देख के आती है जान आँखों में, तुम्हीं को देख के आती है जान आँखों में। हमारे अश्क कभी पढ़ के गौर से देखो, हमारे अश्क कभी पढ़ के गौर से देखो। तवील दर्द की है दास्तान आँखों में, तवील दर्द की है दास्तान आँखों में। हमेशा रोकती है आबशार बहने से, हमेशा रोकती है आबशार बहने से। हो जैसे जब्त की कोई चटान आँखों में, हो जैसे जब्त की कोई चटान आँखों में। बहकने लगता है एक बार जो यहाँ झांके, बहकने लगता है एक बार जो यहाँ झांके। लगी है क्या कोई मैकी दुकान आँखों में, लगी है क्या कोई मैकी दुकान आँखों में। सदाए देते हैं दीवार उधर तुम्हें सीमा, सदाए देते हैं दीवार उधर तुम्हें सीमा। तुम्हारी याद का है एक मकान आँखों में, तुम्हारी याद का है एक मकान आँखों में। परिंदे जैसी कभी थी उड़ान आँखों में, पसर गई है मगर अब थकान आँखों में, पसर गई है मगर अब थकान आँखों में। चंदाशार इश्क पर। इश्क में रुसवाइयाँ मिलने से डर जाते हैं लोग, इश्क में रुसवाइयाँ मिलने से डर जाते हैं लोग। इश्क की राहों में हद से भी गुजर जाते हैं लोग, इश्क की राहों में हद से भी गुजर जाते हैं लोग। दौड़ती इस जिंदगी में मोड़ जब आए हंसी, दौड़ती इस जिंदगी में मोड़ जब आए हंसी। इश्क के नुक्कड़ पर अक्सर ही ठहर जाते हैं लोग, इश्क के नुक्कड़ पर अक्सर ही ठहर जाते हैं लोग। इश्क की बस्ती में आए दिन नया तूफान है, इश्क की बस्ती में आए दिन नया तूफान है। जानकर भी डूबने फिर क्यों उधर जाते हैं लोग, जानकर भी डूबने फिर क्यों उधर जाते हैं लोग। देखकर महबूब की आंखों में अपने अक्स को, देखकर महबूब की आंखों में अपने अक्स को। इश्क के आईने में सज और संवर जाते हैं लोग, बेवफाई के किसी आज़ाद पंछी की तरह, बेवफाई के किसी आज़ाद पंछी की तरह। शाख जो देखी हरी उस पर उतर जाते हैं लोग, शाख जो देखी हरी उस पर उतर जाते हैं लोग। इश्क में रुसवाइयाँ मिलने से डर जाते हैं लोग।

0: श्रोता भी सुन रहे थे लीजिए प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम में अफसाना जिंदगी के बदलते रंग। अफसाना निगार हैं सादिया राशिद।
1: आखिर अम्मा आप रो रो कर क्यों हलकान हो रही हैं? जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं लिखता। और क्या आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। हो सकता है यही मेरे लिए बेहतर हो। प्यारी अम्मा हिम्मत मत हारिए। अगर जिंदगी में एक बार खजा आती है तो दूसरी बार बहार जरूर आएगी। दानिया अपने लफ्जों में माँ को तसल्ली देने लगी। आखिर मैं एक माँ हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे आखिर क्या कमी नजर आई थी मेरी बेटी में, जिस कमी की वजह से रिजेक्ट किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों की तरह हमारे पास देने को जहेज नहीं है, लालची लोगों को हमारा अखलाक नजर नहीं आया, ये साफ शफाफ दिल नजर नहीं आया, लोग क्या सोचेंगे, 2 साल की मंगनी क्यों टूट गई, आखिर क्या वजह थी? सुल्ताना बेगम के आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मी लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। अम्मी ये दुनिया बेबुनियाद बातों के अफसाने बना देती है, फिर लोगों से क्या डरना? बेटी रहना भी हमें इसी मुआशरे में है। ये बात तो सच है, ये दुनिया न दुख देख सकती है न सुख। छोड़िए अम्मी दुनिया को, अपनी फिक्र कीजिए, इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो माँ को बहलाने लगी। दानिया अपनी माजी की यादों में गोते लगाने लगी। दादी के 2 बेटे थे, उसके अब्बू और शाहरुख चाचा। अब्बू निहायत सुलझे हुए नर्म मिजाज थे, हर काम हमेशा सोच समझ कर करते। इसके बरक्स चाचा अब्बू के उलट थे, मिजाज बहुत गुस्से वाला, हमेशा वही काम करते जो उनका दिल चाहता। दादी बड़ी बहू अपनी पसंद से लाई थी। सुल्ताना बेगम गरीब मगर शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। अब्बू ने दादी की पसंद से शादी की थी, चाचा ने अपनी पसंद से शादी की थी। चाची एक फैशनेबल खानदान से ताल्लुक रखती थी। बात बात पर अकड़, मिजाज में गुस्सा, दादी मेरी अम्मी को पसंद करती थी, इसलिए चाची मेरी अम्मी से जलती थी। शादी को थोड़े ही दिन गुजरे थे तो चाची ने एक अलग घर लेने का मुतालबा शुरू कर दिया। और जब चाचा ने अलग घर ले लिया तो चाची ने रिश्वत लेने पर उकसाना शुरू कर दिया। चाचा रिश्वत लेकर तरक्की पर तरक्की करने लगे। जब भी दादी चाची से मिलने जाती तो चाची अपनी जुबान दराजी से दादी को 2-4 घाव दे देती। फिर इन्हीं

0: सुनो, चाची के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने साइमा रखा। दानिया के अब्बू रिटायर हो चुके थे, घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी थी। इस हालत में माँ को तसल्ली देना और उनका सहारा बनना वो अपना फर्ज समझती थी। नौकरी के लिए वो इश्तेहारात देखने लगी, रात देर तक निशान लगाने लगी। या अल्लाह, ये इंटरव्यू है या फैशन शो? फहद गुस्से से खौलता, हर एक फैशन एबी लड़की को देख रहा था। 2 घंटे से मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू नहीं फैशन शो में बैठा हूँ, वो गुस्से से बड़बड़ा भी रहा था। मिसेस खान ही सवालात कर रही थी, फहद एक आधा ही सवाल करता, कोई उम्मीदवार जवाब नहीं दे पाती। मैं जा रहा हूँ मम्मी, फहद खड़ा हो गया। बैठो ना बेटा, एक दो उम्मीदवार बाकी हैं। मिसेस खान उसकी परेशानी समझकर मुस्कुराने लगी। मम्मी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तुम्हारे तैश में आने पर मुझे तो लगता है कोई एडिटर के मियार पर पूरी नहीं उतरेगी। बैठो, आखिरी उम्मीदवार बाकी है, वो भी आएगी और नाकाम लौट जाएगी। फहद गुस्से में खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए, मिसेस खान सवालात कर रही थी, दानिया जवाबात दिए जा रही थी। क्या तुम कोई सवाल करोगे फहद? मिसेस खान मुखातिब हुई। फहद ने अजबात में सर हिला दिया। उसने एक नजर उम्मीदवार की तरफ देखा, आने वाली ने काजल की एक हल्की सी लकीर का भी सहारा नहीं लिया था। सादगी, फैशन से बेनियाज चेहरा, दुपट्टा सलीके से सर पर सजाए हुए, उसे हैरत हुई। आपका नाम? दानिया आसिम। तालीम BA। मशगला उर्दू अदब की किताबें पढ़ना।
1: श्रोता भी सुन रहे थे अफसाना जिंदगी के बदलते रंग, और अफसाना निगार थी सादिया राशिद। कार्यक्रम था उर्दू कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं और इसी के साथ इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिनभर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह

अंतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30

0: मैच हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। अब वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी श्रोता 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति वर्ग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा पैक्ड फूड कलर कोडिंग पर। साथ ही आप सुनेगा वार्ता शहरीकरण के दौर में जैव विविधता का भविष्य। वार्ताकार होंगी कृतिका श्रीवास्तव और नई पहल में आप सुनेंगे बौद्धिक संपदा उत्प्रेरक पहल।

शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, जिसमें चर्चा के विषय होंगे बुजुर्गों के प्रति हमारे दायित्व और विश्व जैव विविधता दिवस। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर पंकज लावानिया से अनिंद्र सिंह की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय होगा ब्रज क्षेत्र से अश्वगंधा की खेती। लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। साथ ही आप सुनेंगे पद्मजा शर्मा से कानूनी वार्ता, श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधाएं। 7:10 पर विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा वार्ता, पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है जैव विविधता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नितिन कुमार।

रैन 10:30 पर आकाशवाणी आगरा से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित रविशंकर से राग सांझ कल्याण और राग यमन में सितार वादन। श्रोताओं, अभी आपने सुना आज की सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुर संध्या का। रेडियो की इस पावन तरंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अपने मन वचन और कर्म को पवित्र करते हुए ईश्वर के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। इसी भाव के साथ हम आरंभ कर रहे हैं आज का सुर संध्या कार्यक्रम, जहां संगीत, भक्ति और शांति एक साथ प्रवाहित होंगे।

शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे आप सभी आनंद ले सकेंगे फिल्मों से कव्वालियों कार्यक्रम महफिले कव्वाली, और 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स, और 10 बजे आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश दर्शन।

कान्हा का नाम लेते ही हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। कान्हा की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आप सुन रहे थे भक्ति रचना फिल्म लगान से, लता मंगेशकर और उदित नारायण एवं साथियों की आवाजों में, जिसको लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था A.R. रहमान का। आइए आप सुनते हैं अगली रचना, जो कि है फिल्म स्वदेश से। आवाजें हैं मधुश्री, विजय प्रकाश और आशुतोष गुवारिकर की। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार A.R. रहमान।

0: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। आइए अब सुनते हैं अगली रचना, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल

0: टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना, फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

शिव जी केवल आराधना का प्रतीक नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है। शिव जी के चरणों की धूल में ही भक्ति का सच्चा आनंद छुपा है। इसी के साथ ये कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

0: गुड इवनिंग, मैं प्रतीना आज के कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी काम की बात लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के साथ। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में जितना हो सके धूप में बाहर निकलना अवॉइड करें और हाइड्रेटेड रहें। आज हम भले ही अपने घरों में एसी में बैठकर गर्मियां काट भी लें, लेकिन क्या ये हर जीव के लिए संभव है? हमने अपने फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट के नाम पर जंगल तो नष्ट कर दिए, लेकिन इसका नुकसान हमें तो होगा ही, साथ ही उन जीवों को भी होगा जिनका कोई भी कसूर नहीं। दोस्तों, प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, अपनी एक साइकिल है, अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो नुकसान भला किसे होगा? हमारी इतनी रिच बायोडायवर्सिटी है, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने आप में अलग हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं आज हम विश्व जैव विविधता दिवस मना रहे हैं। दिवस तो हम कई सारे मनाते हैं पर शायद उनका मतलब नहीं समझ पाते। एक दिन उस बारे में बात करते हैं पर उसे अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी हैबिट्स में इंक्लूड नहीं कर पाते। आज शहरीकरण का दौर है दोस्तों, हर किसी को अर्बन लाइफस्टाइल और फैसिलिटीज़ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ऐसे में जैव विविधता का क्या भविष्य है, आइए जानते हैं वार्ताकार कृतिका श्रीवास्तव से।
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी ज़िंदगी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें गांव और छोटे क्षेत्रों का विकास होकर वे शहरों में बदलने लगते हैं। इसे जनसंख्या, उद्योग, सड़कें और भवनों की संख्या बढ़ती है। वहीं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता से है। शहरीकरण और जैव विविधता, ये दो शब्द सुनने में थोड़े बड़े और वैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। एक तरफ है हमारी भरती हुई कंक्रीट की दुनिया और दूसरी तरफ है हरी भरी, जीवन से भरपूर प्रकृति जो धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। सोचिए, आपने बचपन में जो चिड़ियाएं देखी थी वो अब हमें नहीं दिखती ना। वे तितलियां जिन्हें हम बगीचों में पकड़कर खेला करते थे अब शायद ही कहीं नजर आती हैं। वो पुराना पीपल का पेड़ जो गांव के चौक में खड़ा था, अब उसकी जगह एक मॉल ने ले ली है। खुले मैदान जहां हम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करते थे, अब वहां किसी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हो चुका होगा। हमारी आज की यही प्रगति जैव विविधता के लिए नुकसानदेह है और यही आज हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इस पृथ्वी पर अभी तक लगभग 87 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं और अनुमान है कि असल संख्या इससे कहीं अधिक है। ये विविधता केवल सुंदरता के लिए नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। मधुमक्खियां हमारी

फसलों में परागण करती हैं, केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जंगल बारिश लाते हैं, नदियों के किनारे उगने वाले पेड़ बाढ़ रोकते हैं। ये सब एक बड़ी जटिल और नाजुक व्यवस्था है जिसमें हम भी एक हिस्सा हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी सूख जाएगी, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि पैसे खाए नहीं जा सकते। यह कहावत आज से पहले कहीं ज्यादा सच लगती है। भारत इस समय दुनिया के सबसे तेजी से शहरीकृत होते देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरों में रहती है। अनुमान है कि 2047 तक यह संख्या 50% से ऊपर हो जाएगी, यानी अगले कुछ दशकों में भारत के हर दूसरे व्यक्ति का घर किसी शहर में होगा। शहरीकरण बुरी बात नहीं है, इससे रोजगार मिलता है, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, लेकिन जब यह बेतरतीब और बिना योजना के होते हैं तो यह प्रकृति के लिए एक बड़ा संकट बन जाता है। खेत कट जाते हैं, जंगल उजड़ जाते हैं, नदियां सिकुड़ जाती हैं और उन पर निर्भर हजारों जीव अपना घर खो देते हैं। आगरा को ही ले लीजिए, यमुना नदी जो कभी डॉल्फिन और कछुओं की आबादी के लिए जानी जाती थी, आज औद्योगिक कचरे और अनियंत्रित शहरी विस्तार की वजह से गंभीर संकट में है। और ये हर शहर की कहानी है। जब कोई जंगल काटकर कॉलोनी बनाई जाती है तो केवल पेड़ ही नहीं जाते, उनके साथ जाते हैं पक्षियों के घोंसले, कीटों के आवाज, औषधीय पौधे और वह पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो उस जंगल ने सदियों में बसाया था। भारत में पिछले 50 वर्षों में लगभग 40% वन क्षेत्र कम हो चुका है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गिद्धों की संख्या 97% तक गिर गई है। बाघ, हाथी, ये सब खबरों में आते हैं, लेकिन हजारों छोटे जीव, मेंढक, तितलियां, गिरगिट, मकड़ियां बिना किसी शोर के विलुप्त होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम छठे बड़े विलुप्तीकरण के दौर में हैं। 5 बार पहले भी पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर प्रजातियां नष्ट हुई हैं, लेकिन वो सब प्राकृतिक कारणों से हुआ था। यह छठी बार इंसान की वजह से हो रहा है और इसमें शहरीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अक्सर बाघ, शेर बचाने की बात करते हैं और यह जरूरी भी है, लेकिन धरती की असली नींव छोटे छोटे जीवों पर टिकी है। मधुमक्खियां, चींटियां, केंचुए, भृंग और तमाम कीट पतंगे। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो जैव विविधता की रक्षा के लिए अनूठे कदम उठा रहे हैं। पेरू उनमें से एक है। पेरू ने अपनी स्टिंगलेस मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने की दिशा में काम किया है, यानी उन्हें केवल संसाधन नहीं बल्कि प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा मानकर उनकी रक्षा के लिए व्यवस्था की है। यह सोच हमें सिखाती है कि प्रकृति केवल मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं है, हर जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपनी भूमिका है। आपने तस्वीरों में सिंगापुर को देखा होगा, उसे सिटी इन अ गार्डन कहा जाता है। वहां हर नई इमारत में हरियाली अनिवार्य है, छतों पर, बगीचों में, दीवारों पर पौधे हैं। जर्मनी के कई शहरों में इंसेक्ट होटल्स बनाए गए हैं, यानी कीट पतंगों के रहने के लिए विशेष संरचनाएं। मगर हमारा देश भारत भी कहीं पीछे नहीं है। धीरे धीरे ही सही, हम भी जागरूक हो रहे हैं। भारत में भी बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में अर्बन फॉरेस्ट की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन हम एक आम इंसान होने के नाते व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा क्या कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी कि बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी छत पर या बालकनी में देसी पौधे लगाएं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें, प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैली का उपयोग करें, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, उन्हें पेड़ों की पहचान सिखाएं, चिड़ियाएं दिखाएं, अपनी रहवासी सोसाइटी में देशी पौधे लगाने की मांग करें, खुद भी लगाएं, औरों के लिए भी मिसाल बने। मगर सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं, हमें इसके लिए ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। शहरी नियोजन में जैव विविधता को अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए। हर नई टाउनशिप में कम से कम 30% हरित क्षेत्र अनिवार्य हो। नदियों के किनारे निर्माण पर सख्त रोक लगे। पुराने पेड़ों को काटने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो। भारत सरकार की नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे

0: जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं और नागरिकों सभी को सहयोग करना होगा। हमें ऐसे कानून चाहिए जो ना केवल बाघ और हाथी बल्कि मधुमक्खियां, मेंढकों, तितलियों जैसे छोटे लेकिन प्रकृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवों की भी रक्षा करें। लेकिन केवल सरकारों और कानूनों के भरोसे यह बदलाव संभव नहीं है। जब तक समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी, इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक जैव विविधता को बचाने की यह लड़ाई अधूरी है। भारत में कई युवा समूह वृक्षारोपण अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, नदी सफाई और वन्य जीव संरक्षण जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दे गांव और स्तर पर एक साथ काम करना होगा। वैज्ञानिकों को ऐसे समाधान खोजने होंगे जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखें। सरकारों को मजबूत नीतियां और सख्त कानून लागू करने होंगे और समाज को अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक जैव विविधता की रक्षा संभव नहीं हो पाएगी। श्रोताओं, कोई एक वृक्ष सिर्फ एक वृक्ष भर नहीं होता। उसकी जड़ों में होती है चींटियों की बस्ती, उसकी शाखाओं में चिड़ियों के घोंसले, उसके फूलों में मंडराती मधुमक्खियां, ये सब किसी के लिए उसकी पूरी दुनिया हो सकते हैं। और जब वही पेड़ किसी नई सड़क या इमारत के लिए काटा जाता है, तो यह केवल एक पेड़ नहीं जाता, एक पूरी दुनिया उजड़ जाती है। हम उसी जैव विविधता की एक कड़ी हैं जिसे आज खतरा है। अगर वो कड़ी टूटी तो हम भी टूटेंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने शहरों को थोड़ा और हरा बनाएंगे, थोड़ा और जीवंत बनाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक नदी बचाएंगे, एक बच्चे को प्रकृति से जोड़ेंगे, क्योंकि यही असली विकास है जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ जीते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम छठे बड़े विलुप्तीकरण के दौर में हैं। 5 बार पहले भी पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर प्रजातियां नष्ट हुई हैं। वैज्ञानिकों को ऐसे समाधान खोजने होंगे जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखें।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता शहरीकरण के दौर में जैव विविधता का भविष्य, वार्ताकार कृतिका श्रीवास्तव से। दोस्तों, धरती पर विकास की दौड़ तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन इंसान स्पेस में भी काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। आज दुनिया के कई सारे देशों में हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट, मौसम की जानकारी, GPS, मोबाइल नेटवर्क, ये सब सैटेलाइट्स की मदद से ही संभव हो पाता है। लेकिन इस तेज विकास के साथ एक बड़ा खतरा भी बढ़ रहा है और उसका नाम है केसलर सिंड्रोम। दोस्तों, जब अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा पुराने सैटेलाइट्स, टूटे हुए रॉकेट के पार्ट्स और स्पेस डेब्रीज यानी कचरा जमा होने लगे, तो संभावना है कि वो आपस में टकरा सकते हैं। एक टक्कर से हजारों छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं जो फिर दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगे, और इस तरह टक्करों की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। यानी स्पेस डेब्रीज इतनी बढ़ सकती हैं कि स्पेस में सैटेलाइट्स भेजनी मुश्किल हो जाए, और जो मौजूद है वो डेब्रीज से टकराने के कारण काम करना बंद कर दें। इससे हमारा GPS और नेविगेशन सिस्टम प्रभावित होगा ही, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में दिक्कत भी आ सकती है, मौसम की सही जानकारी मिलना मुश्किल हो सकता है और फ्यूचर स्पेस मिशंस खतरे में पड़ सकते हैं। यानी अंतरिक्ष का ये ट्रैफिक पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज अंतरिक्ष में लाखों छोटे बड़े डेब्रीज मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई देशों की स्पेस एजेंसीज अब इसे कम करने के लिए काम कर रही हैं। पुराने सैटेलाइट्स को सुरक्षित तरीके से हटाने, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने और स्पेस क्लीनिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जा रही है। क्योंकि जिस तरह हम धरती को साफ रखने की बात करते हैं, उसी तरह अब अंतरिक्ष को सुरक्षित रखना भी जरूरी हो गया है। तकनीक और विकास मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के बिना विकास कभी कभी खतरा भी बन सकता है। इसलिए जरूरत है स्मार्ट डेवलपमेंट की, चाहे धरती हो या अंतरिक्ष, जिससे हमारे सपने भी पूरे हो पाए और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचे।

0: कोई ना कोई पैकेज्ड फूड जुड़ ही जाता है। आजकल हमें भूख कम लगती है और क्रेविंग ज़्यादा होती है, और तब सबसे अच्छा और इजी ऑप्शन लगता है पैकेज्ड फूड, और धीरे धीरे ये कन्वीनियंस हमारी आदत बन जाती है। इतनी नॉर्मल कि हम टेस्ट, ऑफर्स और अट्रैक्टिव पैकेजिंग तो देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत के लिए अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और यही वजह है कि पैकेज्ड फूड आइटम सिर्फ खाने का नहीं बल्कि हेल्थ अवेयरनेस का भी मुद्दा है, और इन्हीं हेल्थ कंसर्न्स पर ध्यान देते हुए फूड पैकेट्स पर कलर कोडिंग सिस्टम की बात की जाती है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी इन फूड आइटम के पैकेट्स पर छोटे से कलर के निशान देखे होंगे। इन्हें हम कलर कोड कहते हैं, जो बताते हैं कि खाने की चीज़ वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हेल्दी है या इसमें सॉल्ट, शुगर और अनहेल्दी फैट्स की मात्रा ज़्यादा है। भारत में हम अक्सर पैकेट्स पर ग्रीन डॉट या रेड डॉट के कलर कोड्स देखते हैं, जो बताते हैं कि खाने का आइटम वेज है या एनिमल बेस्ड। लेकिन कुछ शहरों में खास तरह की फूड कलर कोडिंग इस्तेमाल होती है, जिसे ट्रैफिक लाइट कलर कोडिंग कहते हैं, जिसमें ग्रीन कोड का मतलब है कि खाने का आइटम हेल्दी है, येलो का मतलब है कि इसे लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, और रेड कलर कोड का मतलब है कि इसमें शुगर, सॉल्ट या फैट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जिससे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। यानी फूड पैकेट खुद आपको वार्निंग देता है। क्या कहते हैं, इस तरह का फूड कलर कोड भारत में भी होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, इन कलर कोड्स के फायदे ये हैं कि कंज्यूमर जल्दी सही डिसीजन ले सकता है, बच्चे और बुजुर्गों के लिए सही फूड आइटम चुनना आसान हो जाता है, और कंपनीज भी प्रेशर बनता है कि वो हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, हमें फूड लेबल पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए। केवल कलर देखकर फूड आइटम हेल्दी है या नहीं, ये हम तय नहीं कर सकते। पैकेट पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हेल्दी दिखने वाला आइटम भी अंदर से ज़्यादा प्रोसेस्ड हो सकता है, और आप गलती से एक्सपायर्ड फूड भी घर ला सकते हैं, जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साथियों, अब जब भी आप कोई पैकेट फूड खरीदें, तो उसके रंगीन सिम्बल्स और पीछे छिपे लेबल पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी आपकी और आपके परिवार की सेहत को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक खास तरह की प्रॉपर्टी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। संपत्ति मतलब जमीन, मकान, सोना या पैसा, है ना? नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जो आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। मान लीजिए आपने नया गाना बनाया, नई मशीन का आइडिया दिया, मोबाइल ऐप बनाई, कोई यूनिक लोगो डिज़ाइन किया या नई दवा खोजी, तो ये सब आपकी सोच और दिमाग की उपज है, और इसी सोच से बनी चीज़ को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा। दोस्तों, आज के समय में आइडियाज़ भी प्रॉपर्टी बन चुके हैं। जिसके पास यूनिक आइडिया है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वही आगे बढ़ रहा है। इसलिए दुनिया भर में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ों का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपकी बनाई चीज़ को कोई दूसरा कॉपी कर ले, तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, है ना? इसीलिए आपके आइडियाज़ को कानूनी सुरक्षा देने के लिए ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। दोस्तों, हमारे देश में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने इनोवेशन को सुरक्षित कैसे करें। कई स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट्स और स्टार्टअप्स जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं, उनके आइडियाज़ कोई कॉपी कर लेता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने का काम करती है बौद्धिक संपदा

वेलकम बैक दोस्तों। 5 मिनट का ब्रेक है, चलो कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर लेते हैं। लेट नाइट स्टडी का प्लान है तो कॉफ़ी और इंस्टेंट नूडल्स तो बनते हैं। बहुत गर्मी है यार, चल कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। आप भी ऐसे ही बातें करते हैं, है ना? कॉलेज, ऑफिस, बिंज वॉचिंग, लेट नाइट स्क्रोलिंग, ट्रैवलिंग, आज हर सिचुएशन के साथ

उत्प्रेरक पहल यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव। इस पहल के माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है कि पेटेंट कैसे कराएं, ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है, कॉपीराइट किसे मिलता है और अपने इनोवेशन को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। सरकार और कई संस्थाएं वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर लोगों को IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में समझा रही हैं। दोस्तों, आज इन्वेस्टर्स भी उन्हीं स्टार्टअप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। यही वजह है कि आज बड़ी कंपनियां अपने आइडियाज़ और ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखती हैं। तो दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सोच है। तो आप कॉपी नहीं, क्रिएट करने पर ध्यान दें और बाकी सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर छोड़ दें।

दोस्तों हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात तो करी, लेकिन शायद क्रिएटर को उसका राइट नहीं देते जिसने हमें और प्रकृति को क्रिएट किया। ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों में प्रकृति के प्रति

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुत करता थी प्रकीर्णा। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम ग्रामीण लोक का।

किसान भाइयों, राम राम। कार्यक्रम ग्रामालोक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे, करने आपसे खेती किसानी की बात, आपके हमारे हित की बात। किसान भाइयों, गर्मी वैसे तो अपने आगरा जनपद में अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग बार बार, आपने देखा होगा आपके फोन पर मैसेज आ रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के न्यूज चैनल्स के माध्यम से चेतावनी दे रहा है गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और तोड़ रही है। तो ऐसे में जहां तक संभव हो सके कोशिश करें अपने जो भी काम है वो सुबह और शाम के समय निपटा लें। दोपहर में खासकर ये जो 12 से 4 का समय होता है उसमें घर से बाहर निकलने से जहां तक हो सके बचें। अगर कोई जरूरी काम है भी और आपको जाना भी पड़ रहा है तो सर पर गमछा टोपी पहनकर हाथ पैर और चेहरा ढक कर घर से बाहर निकलें। पूरी बांह के ढीले सूती कपड़े पहने जिससे शरीर में हवा का आवागमन बना रहे। चुस्त कपड़े ना पहने। बीच बीच में नारियल पानी, दही, दूध, लस्सी खाते पीते रहें जिससे शरीर में तरोताजगी बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे और गर्मी से आपका बचाव होता रहे। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें जिससे शरीर में निर्जलीकरण ना होने पाए। अगर अचानक से कमजोरी महसूस हो या ऐसा लगे कि असहज सा महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, खुद की डॉक्टरी भी ना करें, क्योंकि लू के कई सारे अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। ऐसे में लापरवाही जानलेवा तक साबित हो सकती है। अपने घर के बच्चों और बड़ों का तो इस समय पर आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों की ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, शरीर में ताकत कम होती है, ऊर्जा कम होती है। ऐसे में उनके बीमार होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे भी किसान भाइयों, हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने हमें पालने पोसने में, हमें बड़ा करने में, हमें पढ़ाने लिखाने में अपना पूरा जीवन खपाया है। अपनी खुशी, अपने शौक, अपने आनंद का ख्याल ना करते हुए वो हमारे लिए जिए हैं। जीवन की भट्टी में उन्होंने अपने आप को तपाया है।

तब वो आज हमको इस लायक बना पाए हैं कि हम दो पैसे कमा पाए, अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर पाए, खुश रह पाए, अपने खर्चे चला पाए। ऐसे में जब उनका पुरुषार्थ कम हो रहा है, उनके शरीर की शक्ति कम हो रही है, उनकी ऊर्जा घट रही है, तो हम उनको ठीक वैसे ही प्यार दुलार और देखभाल दें जैसे जब हम मासूम थे, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, जब हमें सही गलत का पता ही नहीं था, जब हमें ये समझ नहीं थी कि हमारे लिए कौन सी चीज फायदेमंद और कौन सी चीज नुकसानदायक है। उस समय उन्होंने हमें पाला पोसा, जीवन की

तो हम उनको ठीक वैसे ही प्यार दुलार और देखभाल दें जैसे जब हम मासूम थे, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, जब हमें सही गलत का पता ही नहीं था, जब हमें ये समझ नहीं थी कि हमारे लिए कौन सी चीज फायदेमंद और कौन सी चीज नुकसानदायक है। उस समय उन्होंने हमें पाला पोसा, जीवन की कठिनाइयों से बचा कर रखा, अपनी बाहों में समेट कर रखा। हमारे बुजुर्ग घर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी वो पूंजी है जिनके पास अनुभवों का खजाना है। हम जो व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ, अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ करेंगे, हमारे बच्चे हमको देखकर वही व्यवहार जब हम बड़े बुजुर्ग होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, हमारे साथ करेंगे, ये तय बात है। आप देखिए, एक छोटा मासूम सा बच्चा जिसको ना ये पता होता है कि आग जलाती है, बिजली से करंट लगता है, पानी से दम घुट जाता है, उस बच्चे को एक माँ 24 घंटे उसके आगे पीछे भागकर उसके खाने पीने, उसके सोने जागने, यहां तक कि उसके मल मूत्र तक का ध्यान रखकर तब पाल पाती है। एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, किसी की भी परवाह किए बिना जी तोड़ मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, एक अच्छा जीवन दे सके, किसी काबिल बना सके। ऐसे में जब आज हमने वो मुकाम पा लिया, जब हम जीवन के उस मुकाम पर आ गए जहां पर अब हमें मौका मिला है कि हम उनकी मेहनत, उनकी शिद्दत, उनके प्यार का, उनकी देखभाल का उनको फल दे सकें, तो इस मौके को चूके नहीं। माता पिता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनका साथ ही हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए काफी होता है। समय समय पर उनके साथ बैठना, उनके मन की दो बातें सुन लेना, उनके जीवन के अनुभवों से सीख लेना, उनके बताए रास्तों पर चलना हमारे जीवन को और बेहतर और खुशनुमा बना देता है। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी खूब सेवा करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आप देखिए, जिंदगी की इस भाग दौड़ में, इस गहमा गहमी में आपको ठंडी हवा के झोंके जैसा आनंद महसूस होगा। इसी उम्मीद के साथ आइए आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

0: किसान भाइयों, हमारी आय बढ़े ये हमारे देश के आम आदमी से लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी तक सभी चाहते हैं, पर इसके लिए बहुत जरूरी है खेती किसानी को वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से किया जाए, फसल का चयन सोच समझ कर किया जाए। जैसे इस समय अगर बात की जाए तो कोविड के बाद से अश्वगंधा एक ऐसी औषधीय फसल है जिसकी मांग और कीमत दोनों ही बड़ी तेजी से बढ़ी है। तो आइए सुनते हैं ब्रज क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती विषय पर डॉक्टर पंकज लवानिया से अनेंद्र सिंह की ये बातचीत।
1: साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2022 तक हमारे किसान समृद्ध हो सकें, उनकी आय दोगुनी हो पाए, और दोगुनी करने के लिए, आप लोगों की आय बढ़ाने के लिए जो परंपरागत खेती है उससे हटके कुछ करे जाने की जरूरत है, और इन्हीं में एक विकल्प है औषधीय पौधों की खेती का। तो आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में, और हमारे साथ बात करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से डॉक्टर पंकज लवानिया जी हमारे स्टूडियो में आज हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, अश्वगंधा उसके बारे में बताएं, उसकी हमारी ब्रज क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरह से किसान इसकी पैदावार करके अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं।
2: हाँ, अश्वगंधा औषधि एक पौधा है जिसकी की जड़ों का हम उपयोग करते हैं। जड़ों का उपयोग हम कमजोरी, दमा, कफ संबंधी बीमारी, अनिद्रा, हृदय रोग एवं दुर्घटना से बने घाव के उपचार में किया जाता है
1: जी।
2: तो इसका उपयोग जो है हम शरीर में शक्ति और स्फूर्ति
1: लाने के लिए
2: हम करते हैं।
1: अच्छा।
2: और अगर इसके चूर्ण का उपयोग हम करते हैं तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम किया जा सकता है।
1: बहुत ही उपयोगी औषधि है ये, तो

0: की खेती क्या हमारे ब्रज क्षेत्र के किसान भी कर सकते हैं, और कर सकते
1: हाँ
0: हैं तो कैसे?
1: हाँ किशन भाई, सबसे पहले मैं इस पौधे की आपको पहचान बताना चाहूंगा। ये अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा होता है जिसके तने एवं पत्ती पर बारीक रोए पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का आकार अंडाकार होता है। फूल छोटे हरे हल्के पीले रंग के होते हैं। फल छोटे गोल नारंगी और लाल रंग के होते हैं। जड़ों को अगर हमको मसले हम और मसल करके अगर सूंघते हैं तो अश्व की गंध आती है, इसलिए हम इसको अश्वगंधा कहते हैं।
0: जो घोड़ा है उसके पसीने की, उसके पेशाब की जो स्मेल रहती है, उस तरह
1: उस
0: का
1: तरह की
0: एक,
1: दुर्गंध आती
0: उस तरह
1: है,
0: की गंध आती है।
1: गंध आती
0: जी
1: है। और इस अश्वगंधा की खेती के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो खेती है हमारे देश के कई राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में की जा रही है। इसकी जलवायु जो है ब्रज क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है 700 मिलीमीटर से लेकर के 1000 मिलीमीटर की रहती है, लेकिन अति उपयुक्त 600 से 750 मिलीमीटर की एरियाज में ज्यादा अच्छा, जहाँ पर
0: पैदावार
1: बारिश,
0: रहती
1: हाँ
0: है।
1: ज्यादा अच्छी पैदावार रहती है। और अगर इसकी जड़ों की जो डेवलपमेंट है, उसकी जड़ों का विकास है, वो ठंड में अगर बारिश एक पड़ जाती है तो उसमें जड़ों का विकास अच्छे से होता है। इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर हल्की भूरी मिट्टी, अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और पीएच की जो मात्रा है
0: जी
1: 7.5, 7.5 से 8 के बीच में होना चाहिए।
0: तो क्या ये अश्वगंधा की भी कोई किस्में होती हैं? किस तरह से किसान लोग
1: हाँ
0: इसकी खेती, या किस्में अगर हैं तो कौन सी किस्में ले सकते हैं?
1: हाँ अश्वगंधा की खेती के लिए पोषिता जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 की बुवाई करनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: अश्वगंधा के पौधे में जुलाई से सितंबर के बीच में फूल आते हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में फल आते हैं। पके हुए फलों से बीज निकाल करके हम धूप में सुखाते हैं और धूप में सुखाने के बाद इसकी हम बुवाई के लिए हम इसको तैयार करते हैं।
0: तो क्या नर्सरी तैयार करनी पड़ती है या कैसे करते हैं?
1: हाँ, इसके लिए नर्सरी भी तैयार करते हैं और हम जो है खेत में डायरेक्ट जो है
0: बीज को भी
1: छिड़काव के माध्यम से हम इसको शो
0: बो
1: कर सकते
0: सकते
1: बो
0: हैं?
1: सकते हैं।
0: जी
1: छिड़काव से पहले हम क्या करते हैं, इसके बीज को हम 24 घंटे पानी में भिगो करके खेत में छिड़काव करते हैं और उस पर हल्की जो है मिट्टी की परत का भी छिड़काव करते हैं, जिससे कि वो जो बीज है हमारा छुप
0: वो
1: जाए,
0: थोड़ा सा
1: मिट्टी
0: छुप
1: में छुप
0: जाए।
1: जाए।
0: जी
1: और इसके हम नर्सरी बना करके भी हम इसकी खेत में बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं। नर्सरी बेड पर हम जो है सीड को सोइंग कराते हैं, सीड की बुवाई करते हैं, और जब पौधा जो है हमारा 60 दिन का हो जाता है तब हम इसको खेत पर लाइन
0: लाइन में
1: कतार
0: इसको कतार में
1: कतार
0: बता
1: वाइज
0: इसको बुआई करते
1: बुवाई
0: हैं।
1: करते हैं। कतार
0: जी
1: वाइज में पौधे से पौधे के बीच में और लाइन से लाइन के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं।
0: जी तो ये जो हमने पौध लगा दी, उसका रख रखाव कैसे करना है फिर?
1: रख रखाव के लिए पौधे की आयु जो है 60 दिन की हो जाती है, तो फिर हम उसकी रोपाई करते हैं, कतार में लगाते हैं और उसके बाद हम इसकी निराई और गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई का जो है हमारा हर 30 दिन के अंतराल पे हम इसकी निराई गुड़ाई
0: हर
1: करते हैं।
0: महीने के बाद
1: हाँ,
0: एक दफ़े निराई करनी ज़रूरी
1: निराई
0: है,
1: करना जरूर।
0: और ये जो खाद पानी भी उसमें देने की
1: हाँ,
0: ज़रूरत
1: खाद
0: होती है?
1: पानी देने की आवश्यकता होती है। खाद पानी के लिए वैसे इसमें कोई विशेष रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं, लेकिन गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता रहती है।
0: गोबर की खाद से ही काम चल
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: गोबर की खाद से काम चल
0: अच्छा,
1: जाता है।
0: तो इसमें कोई, इसकी खेती अगर किसान करते हैं तो ऐसा तो नहीं कोई कीटों से या किसी अन्य चीज़ से इसकी फसल को खतरा रहता हो?
1: हाँ, इसके जो प्रमुख कीट हैं, तना छेदक कीट है और मकड़ी। प्रमुख रोग बीज सड़न होता है, पौध अंगमारी होती है और झुलसा रोग होता है इसे।
0: जी, अगर ये रोग हो जाते हैं तो फिर इनका नियंत्रण भी ज़रूरी है, तो वो कैसे
1: हाँ,
0: किया जाए?
1: तो बीज सड़न और पौध अंगमारी से रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, बोबिस्टीन 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसकी हम इसको उपचार करते हैं बीज का।
0: जी
1: और झुलसा अगर रोग होता है तो डाइएथेन M45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में की दर से हम 30 दिन तक इसका छिड़काव करते हैं और फिर 15 दिन के अंतराल पर 2 और 3 बार छिड़काव करने से झुलसा रोग कम हो जाता है।
0: और जो आप बता रहे थे मकड़ी, उसका क्या उपाय है?
1: इसमें हम जो रोकथाम के लिए स्पिरिनोसेड 2 मिलीमीटर मतलब 200 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम जो है इसका छिड़काव करते हैं,
0: कौन सी दवा बताई आपने? स्पिनोसेड।
1: स्पिरिनोसेड।
0: अच्छा, और फिर इसकी जब फसल होती है तो उसकी किस तरह से कटाई और उसकी पैदावार कैसे लेते हैं?
1: अश्वगंधा की कटाई जनवरी से मार्च तक लगातार चलती है। इस पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है।

0: इन जड़ों को 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई तक हम काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में रख लेते हैं, इसे आसानी से इसे सुखाने के लिए, और इसके बाद जो है हम इसका यूज़ करते हैं।
1: जैसा कि आपने बताया कि जड़ों का जो पाउडर है वो यूज़ किया जाता है, तो कटाई करने में फिर जड़ों को हम निकालते हैं और फिर उनको सुखाते हैं,
0: हाँ
1: तो इसकी पैदावार कितनी हो जाती है, कितनी पैदावार 1 हेक्टेयर में किसान ले सकते
0: हाँ
1: हैं?
0: 1 हेक्टेयर में अश्वगंधा की पैदावार 600 से 800 किलोग्राम जड़ हमें मिल जाती है और 50 किलोग्राम हमको बीज प्राप्त हो जाता है। बीज से हम नए पौधों को तैयार करते हैं
1: अगले अगले
0: अगले
1: बार अगर हमें
0: समय।
1: फिर से फसल लेनी है तो हम 50 किलो बीज 1 हेक्टेयर की फसल से खुद ही पैदा
0: खुद
1: कर
0: ही पैदा
1: सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते
1: तो किसान साथियों, आपने देखा कि औषधीय पौधे, डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया अश्वगंधा, हमारे इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ही माकूल है, और इसकी पैदावार करके हमारे किसान साथी जो भी इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी चाहते हैं कि परंपरागत खेती से हटके कुछ ऐसा किया जाए जिससे आमदनी बढ़ाई जा सके, तो वो अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान साथियों को ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप ब्रज क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती विषय पर डॉक्टर पंकज लवानिया से अनेंद्र सिंह की बातचीत सुन रहे थे। लेते हैं एक अंतराल।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, हमारी दुनिया में हमारे अलावा भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की लाखों प्रजातियां हैं जो किसी ना किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से निर्भर हैं। लेकिन कह लीजिए कि हमारी लापरवाही के चलते या भौतिकता की इस अंधी दौड़ के चलते कहीं ना कहीं हम प्रकृति के इस गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं और पशुओं और इंसानों के बीच में टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको हम अक्सर अखबारों में पढ़ते, सुनते और देखते हैं। इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जैव विविधता को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए हर साल 22 मई को, यानी कि आज ही के दिन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष इस दिवस की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक स्थानीय स्तर पर कार्य नहीं होता, तब तक किसी भी योजना, किसी भी तंत्र या किसी भी कार्य का सफल हो पाना संभव नहीं होता। तो आइए आप और हम मिलकर अपनी जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करें। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना जैविक खेती अपनाएं, शुद्ध अनाज उगाएं, हवा, मिट्टी, पानी को शुद्ध बनाएं, साफ रखने में, स्वच्छ रखने में, जैव विविधता को बरकरार रखने में हाथ बटाएं। आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

किसान भाइयों, विगत 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। आपके सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे की राम राम।

ग्राम्य लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी अपनी रेडियो साथी मनीषा अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रख रहे होंगे। क्यों? अरे भाई, मई का महीना चल रहा है और गर्मी ने तो जैसे अपने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। भई ना तो सुबह चैन मिल रहा है और ना ही रात को। सुबह होते ही तेज धूप, गर्म हवाएं और जो हीट वेव है ना, वो लोगों को इतना परेशान कर रही हैं। तो ऐसे मौसम में जब आप काम करते हैं ना साथियों, तो बीच बीच में बार बार पानी जरूर पीते रहें ताकि आपको गर्मी में चक्कर ना आए, लू भी ना लगे और शरीर में से पानी की कमी भी ना हो पाए। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो सिर और कान जरूर से ढककर बाहर जाएं ताकि ये जो हीट वेव यानी गर्म हवाएं चल रही है ना, उससे आप अपने आप को आसानी से बचा सकें। साथियों, ऐसे समय में पेड़ पौधों के पास या हरियाली में रहने से या इनके पास थोड़ा समय बिताने से अच्छा महसूस होता है। आपने ध्यान दिया होगा कभी कि जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर गर्मी भी थोड़ी सी कम महसूस होती है। पक्षियों की चहचहाहट हो या तितलियों का फूलों पर उड़ना हो, बारिश का समय पर आना, ये सभी जो है प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं और यही संतुलन हमें जोड़ता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता से, जो कि हर साल 22 मई आज के दिन मनाया जाता है। साथियों, आपको बताते चले कि जैव विविधता का मतलब होता है धरती पर मौजूद अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकौड़े और जल में रहने वाले जीव। आम का पेड़ हो या जामुन का, नीम का पेड़ हो या अमरूद का, गाय हो, तितली हो, गौरैया हो या हो नदी की मछलियां, ये सभी हमारी जैव विविधता का ही हिस्सा है। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि जैव विविधता हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो चलिए आपको बताते हैं कि धरती पर जैव विविधता कई महत्वपूर्ण काम कैसे करती है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र यानी जो प्रकृति का जो संतुलन होता है उसको ये बनाए रखती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। जैसे कि जंगलों में पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पक्षी बीज फैलाते हैं और जो कीड़े होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इस तरह से हर जीव का अपना एक खास काम होता है। तो ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी मदद करती है। जब पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं तो वो मिट्टी में मिल जाती हैं और वही मिट्टी को ये उपजाऊ बनाती हैं, नई नई फसलों को पोषण देती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे प्रदूषण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कैसे? भैया, हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं जिससे जलवायु संतुलित रहती है। भाई, पानी की सुरक्षा में भी जैव विविधता का बड़ा योगदान है। जंगल और पेड़ जो हैं, वो बारिश के पानी को जमीन में रोककर भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो जल स्रोत भी धीरे

0: धीरे सूखने लगेंगे। साथियों, इसी तरह मिट्टी के निर्माण में और संरक्षण में भी प्रकृति का अहम रोल है। पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे कि बाढ़ और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। जरा सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना हो तो फूलों से फल कैसे बनेंगे? अगर पेड़ ना हो तो हमें छांव कौन देगा? ठंडी शुद्ध हवा कहां से आएगी? अगर पक्षी ना हो तो प्रकृति इतनी सुंदर कैसे लगेगी? यानी कि हर छोटा बड़ा जीव इस धरती के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे गांव में जब हम सुबह सुबह उठा करते थे तो उठने से के साथ ही गौरैया की आवाज चारों तरफ सुनाई देती थी। हम यूं कहें कि गौरैया की आवाज से ही जाग खुल जाती थी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही जब हम खेतों में जाते थे तो रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दिया करती थी। तालाब के पास जब खेलते खेलते पहुंच जाते थे, पानी पीने का मन होता था तो मेंढकों की टर टर सुनाई दे जाती थी। लेकिन अब क्या, अब तो धीरे धीरे सब कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और पर्यावरण की अनदेखी। साथियों, प्रकृति हमें बिना किसी शिकायत के बहुत कुछ देती है, शुद्ध हवा भी, पानी भी, फल भी, अनाज भी, और तो और जीवन भी। लेकिन बदले में हमें भी प्रकृति की रक्षा करनी है। अगर हम अपने आसपास छोटे छोटे बदलाव कर लें, जैसे कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, पक्षियों के लिए छत या आंगन में दाना पानी रखें, पेड़ लगाएं और पानी को बिल्कुल बर्बाद ना करें, तो हम धीरे धीरे ही सही पर काफी बदलाव ला पाएंगे। आप अपने घर में एक बच्चा एक पौधा अभियान भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जब आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो उस दिन आप एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। साथियों, यकीन मानिएगा, जब वो पौधा बड़ा होगा ना तो आपको भी गर्व महसूस होगा। तो आइए आज के इस खास दिन को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर, हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। प्रकृति को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, साथ ही धरती को हरा भरा बनाएंगे। क्योंकि जब जैव विविधता सुरक्षित रहेगी तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा। वैसे साथियों, प्रकृति की गोद में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, पेड़ों की शाखाएं लहराती हैं और मौसम हल्का सा सुरीला हो जाता है तो मन खुद ब खुद खूबसूरत एहसास में खो जाता है। तो फिर चलिए ऐसे ही मौसम और प्रकृति के बीच खो जाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पर, कि किस तरह ये हमारी ग्रह का ताना बाना है, ये मानव कल्याण का आधार भी है। अगर ये तेजी से गिरता रहा तो प्रकृति और मनुष्य दोनों के लिए खतरा है। इसीलिए हमें इसे गिरने नहीं देना है, बल्कि संभाल कर संजो कर रखना है। तो क्यों ना आपसे इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाए। आपको बताना ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप इसका जवाब सोचिए, तब तक आपको ले चलते हैं राजस्थान की तरफ। अरे अरे, घबराइए नहीं, हम इस तपती गर्मी में आपको रेगिस्तान की सैर करवाने थोड़े ना ले जा रहे हैं, बल्कि वहां के हिल स्टेशन माउंट आबू ले जा रहे हैं, वो भी ज्ञान सागर के अंतर्गत। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची

0: चोटी पर बना ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। जानते हैं साथियों, गर्मियों में भी यहाँ मौसम ठंडा ही रहता है, इसीलिए इसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ जाने का मन बना रहे हैं तो इस समय आप यहाँ जा सकते हैं। नक्की झील की बोटिंग जरूर से करके आए, इसके चारों तरफ आपको हरी भरी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। साथ ही वहां पर दिलवाड़ा टेंपल भी है जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना था, और ये है बहुत ही शानदार संगमरमर की नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना माना, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। यहाँ से पूरे माउंट आबू और आसपास की घाटियों का बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। सनसेट पॉइंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है ही, तो ऐसे में आप अगर वहां जाएं तो इन सारी जगहों पर घूमकर जरूर आएं। पर फिलहाल अगर आप यहीं पर हैं तो भी आपको गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पारा भाई 45 डिग्री को भी पार करने में लगा है। तो ऐसे में भाई हमारे श्रमिक भाई बहनों, आप सबको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप जब भी अपने काम पर जाएं तो नंगे पांव घर से ना निकलें, सिर पर टोपी या गमछे से अच्छी तरह से अपने आप को लपेट लें, उसके बाद ही निकलें। साथ ही घर से आप जब जाएं तो अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, ठंडा पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, आम का पन्ना, सत्तू वगैरह पीकर ही निकलें। इसके अलावा जब भी आप घर से निकलें तो हल्के रंग के सूती कपड़े ही पहनें। गहरे और चटकीले रंगों में गर्मी एक तो ज्यादा लगती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं। घर से बाहर निकलते समय छाते का भी उपयोग करें और आंखों को गर्मी से बचाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें, और 12 से 3 बजे के बीच में भारी काम करने से बचें। ताजा भोजन खाएं, बासी या बाजार का खाना बिल्कुल ना खाएं, इसको जहां तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि आजकल गर्मी में जो खाना है वो घर का ही बहुत जल्दी खराब हो रहा है, तो बाहर के खाने की क्या ही बात करें। इसलिए और अगर लू लग भी जाए तो सिर पर ठंडा पानी डालें या ठंडी गीली पट्टी को रख लें, ORS का घोल पिएं और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से आप लू से अपने आप को और अपनों को बचा कर रखें। तो यहां हम आगे बढ़ने से लेते हैं एक क्षणिक अंतराल।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोगों को अपने अधिकारों और कानूनी सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि काम के उनके घंटे कितने हैं, या फिर अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्हें सहायता कैसे मिलेगी, या जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए हैं। अगर आप इन सब की जानकारी चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ आपको ये वार्ता सुनवाते हैं पद्मजा शर्मा से, और इस वार्ता का नाम है श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधाएं।
4: हमारे समाज में श्रम को आरंभ से ही महत्व दिया जाता रहा है। हर व्यक्ति अपने आप में एक श्रमिक है, क्योंकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है। या कहीं भी नौकरी

0: करके तय मजदूरी प्राप्त करता है। आज के समय में उद्योगों के विकास को देखते हुए श्रमिकों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रमिक अपना अपना काम करते हैं। इन श्रमिकों में कुछ तो प्रशिक्षित और पढ़े लिखे होते हैं, वहीं कुछ श्रमिक अप्रशिक्षित और बिना पढ़े लिखे होते हैं। श्रमिकों में पुरुष, महिलाएं और 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना दंडनीय अपराध है। इन श्रमिकों के लिए मालिकानों द्वारा वेतन या मजदूरी के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कराई जाती हैं। इसके लिए बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनका पूरा लाभ श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। हमारे देश में श्रमिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सुरक्षा दिए जाने की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। जिन स्थानों पर श्रमिक काम करते हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी आवश्यक सुविधाओं की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यदि श्रमिकों को इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, तो वे अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं और मालिकानों को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वे उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगभग 40 करोड़ श्रमिक काम करते हैं, जिनमें अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों से अधिक काम लेकर बहुत कम मजदूरी दी जाती है। वहीं महिला श्रमिकों को शारीरिक शोषण, छेड़छाड़ और दूसरी तरह की कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि महिला श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, तो वे इस तरह उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम, भविष्य निधि, ESI, बोनस, काम करने के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर हर्जाना, न्यूनतम वेतन जैसे लाभ सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन कारखानों में अधिक संख्या में श्रमिक काम करते हैं, वहाँ श्रमिकों के लिए कैंटीन, मनोरंजन और आराम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराना मालिकानों का कानूनी दायित्व होता है। श्रमिकों को ये सुविधाएं निशुल्क प्राप्त होती हैं। जो श्रमिक दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मजदूरी कर काम करते हैं, उनके लिए सरकार से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और ESI की सुविधा भी प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए श्रमिकों को अपने वेतन से अंशदान की कटौती करानी होती है। जितना अंशदान श्रमिक करते हैं, उतना ही मालिकों को भी करना होता है। ESI के अंशदान के बदले श्रमिक और उसके आश्रितों को ESI अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा और बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि भविष्य निधि में अंशदान करने पर श्रमिक आवश्यकता पड़ने पर इस निधि में से धनराशि निकलवा सकते हैं अथवा रिटायर होने पर पूरी रकम प्राप्त कर सकते हैं। काम के दौरान किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे समुचित मुआवजा और वेतन सहित अवकाश इलाज पूरा होने तक मिलता है। वहीं स्थायी विकलांग होने पर या मृत्यु होने पर उसके परिवार को नियमानुसार हर्जाना भी दिया जाता है। श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन या मजदूरी में से अनुचित कटौती नहीं की जा सकती। हड़ताल, तालाबंदी या आपात स्थिति आने पर श्रमिकों को अलग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार वेतन या सुविधाएं दिए जाने का भी प्रावधान है। वहीं विशेष परिस्थितियों में काम से छुट्टी लेने और काम के घंटे तय करने का अधिकार भी श्रमिकों को मिला हुआ है। विशेष अवसरों पर श्रमिकों को मालिकों की ओर से लाभ में से बोनस देने की भी व्यवस्था देखने को मिलती है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे पद्मजा शर्मा से वार्ता, जिसका नाम था श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधाएं। तो हमारे मेहनतकश भाई बहनों, अब आप समझ ही गए होंगे अपने अधिकारों को, जरूरत पड़ने पर इनका लाभ जरूर उठाइएगा। जानकारी ही सुरक्षा है। साथियों, आज शुक्रवार है, तो आज की पाती में देखते हैं ये पत्र किसका आया है। ये पत्र हमें भेजा है आगरा जिले के बटेश्वर गांव से राधा कुमारी ने।

राधा बहन लिखती हैं, मेरे पति शहर गए हुए हैं कमाने, क्योंकि हम घर में 8 लोग हैं, सास ससुर हैं, 2 नंदे हैं, 1 देवर है, 2 बच्चे हैं और ये खुद हैं। इसलिए पति के ऊपर जिम्मेदारी है पूरे परिवार की। लेकिन इनके पति 8 महीने से बाहर हैं, ना पत्र लिखते हैं ना फोन पर बात करते हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ उनके लिए। यहाँ मैं किसी के खेतों पर काम करती हूँ, मजदूरी भी करती हूँ, सब अकेले संभाल रही हूँ और हिम्मत भी कभी कभी टूट जाती है। तो राधा बहन, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई, आपके पति काम में बहुत ही व्यस्त होंगे, समय मिलेगा तो आपसे जरूर बात करेंगे। आप यहाँ संभाल रही हैं सबको, वो वहां पर काम संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी आप भी उठा रही हैं और वो भी। तो ना तो आप चिंता कीजिए ना ही हिम्मत हारिए। तो चलिए इनकी पसंद पर सुनवा देते हैं आपको अर्पण फिल्म का ये गीत।

साथियों, हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब है 5 जून। जी हाँ, ये दिन पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है।

साथियों, घड़ी की सुइयां अब हमें बैठने नहीं दे रही और कह रही है कि चलो उठो यहाँ से, और समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। तो आज की कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की मनीषा अरोरा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। प्रोग्राम प्रेजेंटर थी मनीषा अरोड़ा। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा

0: जरूरी है जैव विविधता।
1: हमारी धरती जीवन के रंग बिरंगे मनोहर रूपों से रची बसी है। भांति भांति के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं ने धरा को जीवंत और सृष्टि को सुंदर बनाया हुआ है। जैव विविधता के कारण पृथ्वी अनगिनत आश्चर्यों को समेटे हुए रचनात्मक और प्रगतिशील बनी हुई है। जैव विविधता अर्थात बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जो विभिन्न जंतुओं की भिन्नता और उनका पारिस्थितिक तंत्र से संबंधों का तुलनात्मक ज्ञान कराता है। जैव विविधता संपूर्ण भूमंडल पर समान रूप से वितरित नहीं है। यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेषतर विषुवत रेखा के समीप अधिक और ध्रुवों पर कम पाई जाती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणी समूहों एवं परितंत्र का एक ऐसा समन्वय है जिससे विभिन्न प्रजातियों के नामकरण, उत्पत्ति और परितंत्र भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चाहे रेगिस्तान हो या महासागर, पर्वत हो या पठार, जीवन सभी जगह अपने अनगिनत सुंदर रूपों में मुस्करा रहा है। पृथ्वी ने सभी जीवों को कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं प्रदान की हैं जो उसे जीवों से विशिष्ट बनाकर पर्यावरण से सामंजस्य बनाते हुए क्रियाशील बनाती हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस पृथ्वी पर संपूर्णतः 30 लाख से 3 करोड़ तक प्रजातियां मौजूद हैं। इस जीव जगत में अधिक तादाद में सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 10 करोड़ जीवाणु मौजूद होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के बावजूद भी इनका पर्यावरण संतुलन में विशेष योगदान है। ये सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर भूमि को उर्वरा बनाते हुए धरा को अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त रखते हैं। यदि ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं, तो कूड़े कचरे के ढेर के कारण पृथ्वी पर जीवन की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी। सही मायनों में वनों की विशेषता भी जैव विविधता पर ही निर्भर करती है। ऊंचाई पर पाए जाने वाले बांज प्रजाति के पेड़ भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि शंकुधारी वन इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। वनों में उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियां भी वन्य जीवों की शरणगाह होती हैं। वास्तविक रूप में सभी जैव प्रजातियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इन विविध जीवों और वनस्पतियों का अनुपात ही पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखता है। जिस क्षेत्र में वन्य जीवों, वनस्पतियों, कीटों और मानवों के बीच में संतुलन रहता है, वहां पर्यावरण संतुलन के लिए कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भारत एक विशिष्ट भूभाग और जलवायु भिन्नता के कारण जैव विविधता की समृद्धता के लिए एक अनुकूल देश है। विविधता संपन्न हमारे देश में अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों से लेकर बहुत कम वर्षा वाले रेगिस्तान भी हैं। हमारे देश में अत्यंत ठंडे और बहुत अधिक गर्म स्थानों के साथ साथ मैदान और समुद्रीय क्षेत्र भी हैं। यह सभी विभिन्नताएं जैव विविधता की दृष्टि से भारत को अनुकूल और समृद्ध बनाती हैं। इस कारण विविधता संपन्न राष्ट्रों में भारत की गिनती विश्व के सबसे अधिक 12 जैव विविधता संपन्न देशों में की जाती है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना से जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति में जैव विविधता का संरक्षण आदिकाल से ही धर्म के रूप में विद्यमान है। भगवान विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार आदि सभी जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में अपरिग्रह भी जीव जगत और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश प्रदान करती है। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में वृक्षों को काटना एक अपराध

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आप समय है कार्यक्रम विविधता का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर नितिन कुमार से वार्ता। वार्ता का विषय है पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी

0: याद है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जीवन के विविध रूपों में प्रकृति प्रेम को ही देखते थे। उनका कहना था, मैं केवल मानव जाति के बीच भाईचारे अथवा उसके साथ तादात्म्य की स्थापना नहीं करना चाहूंगा, बल्कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों सहित समस्त प्राणी जगत के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए जीवन जितने रूपों में है सब मूलतः एक ही है। आज मानवीय गतिविधियों के चलते पर्यावरण और जैव विविधता को संकट उत्पन्न हो गया है। असंतुलित विकास ही जैव विविधता का दुश्मन होता है। आज जमीन के प्रदूषण से जमीन के अंदर रहने वाले केंचुए, बैक्टीरिया और शैवालों की संख्या और गुणात्मकता दोनों घट गई है। आज वैश्विक कल्याण की भावना की बजाय निज हित की सोच ने मानव को प्रकृति का विरोधी बना दिया है। प्राकृतिक संपदा के अंधाधुंध दोहन ने प्राकृतिक परिवेश को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण जैव विविधता सिमटती जा रही है। आज केवल भारत में ही 450 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, 150 से अधिक स्तनधारी और 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जीव जंतुओं की 47,667 प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक जैव विविधता के प्रति मानवीय समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 29 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया था।
1: कार्यक्रम विविधता के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर नितिन कुमार से वार्ता, पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है जैव विविधता। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
3: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपनी स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है

0: की साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
2: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
1: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराई स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
3: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर

0: में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: श्रोताओं, आप सभी हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। आप कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्रिय श्रोताओं और साथियों को आपकी रेडियो होस्ट यानी कि मैं सागर जग्गी का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जहां हम बात करते हैं भारत की उस गौरवशाली मिट्टी की जिसने अनगिनत वीरों को जन्म दिया और देशभक्ति की अमर गाथाएं रची। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी 1897 की क्रांति की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

तुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

साल 1897 भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय जब देश के सैनिकों, किसानों, राजाओं और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार संगठित रूप से आवाज उठाई। इसे अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी कहा, लेकिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। इस क्रांति के पीछे श्रोताओं केवल एक कारण नहीं था, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, भारतीय राजाओं के राज्य हड़पने की नीति, किसानों पर अत्याचार, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, ये सभी कारण लोगों के भीतर गुस्से की आग पैदा कर चुके थे। लेकिन इस आग को भड़काने वाली चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल का कारतूस। कहा जाता था कि कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुई। सैनिकों को कारतूस काटने पड़ते थे और इसी बात ने विद्रोह को जन्म दिया।

श्रोता, आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, इस क्रांति के सबसे पहले वीर नायक थे मंगल पांडे। 29 मार्च 1897 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी, यद्यपि उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी वीरता ने पूरे देश में क्रांति की लौ जला दी। 10 मई 1897 को मेरठ से सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और फिर दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर क्रांतिकारियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। बहादुर शाह जफर उस समय बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उनकी शायरी में देश का दर्द झलकता था। श्रोताओं, क्रांति की सबसे बड़ी वीरांगनाओं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तलवार उठाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया। घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि में लड़ती रानी लक्ष्मीबाई आज भी साहस और वीरता का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका प्रसिद्ध वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है।

0: सुने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: इस ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में। श्रोता, हम बात कर रहे थे 1897 की क्रांति के बारे में। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने श्रोताओं युद्ध लड़ा युद्ध भूमि में, उसी तरह ताते टोपे ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान किया। वे नाना साहेब के विश्वसनीय सहयोगी थे। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत किया। बिहार में कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से युद्ध किया। 80 वर्ष, सोचिए श्रोताओं, इतनी उम्र में भी उनका साहस युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने साबित कर दिया कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। अवध क्षेत्र में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और महिलाओं की शक्ति का परिचय दिया। श्रोताओं, 1897 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने इसे कठोरता से दबा दिया। हजारों क्रांतिकारी शहीद हुए, अनेक राजाओं के राज्य छीन ले गए और बहादुर शाह सफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ऐसी लौ जलाई जो 1947 तक लगातार जलती रही।

श्रोताओं, 1897 का संग्राम हमें यह सिखाता है कि जब देश की अस्मिता पर संकट आए तब पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने मिलकर इस लड़ाई में हिस्सा लिया। यह भारत की एकता और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण था। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका संघर्ष, उनका साहस और उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। तो आइए, मेरी माटी मेरे देश के इस कार्यक्रम में हम उन सभी अमर क्रांतिकारियों को नमन करें जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया। इसी के साथ ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8

नुसरत फतेह अली खान की आवाज में सुन रहे थे आप कव्वाली फिल्म कच्चे धागे से, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था नुसरत फतेह अली खान का ही। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, जो कि है फिल्म वीर ज़ारा से। आवाजें हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और उसमें संगीत है मदन मोहन का।

सर झुकाए हैं तेरे दर पर तो कुछ पाकर ही जाऊंगा, खाली हाथ आया था पर झोली भर कर ही जाऊंगा। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिले कव्वाली।

कादर गुलाम मुस्तफा और मुर्तुजा की आवाज़ों में ये कव्वाली आपने सुनी फिल्म फिजा से, जिसको लिखा था गुलजार ने और संगीत आया रहमान का। आइए अब सुनते हैं अगली कव्वाली, जो कि है फिल्म बजरंगी भाईजान से, अदनान सामी की आवाज़ में। गीतकार हैं कौसर मुनीर और संगीतकार प्रीतम।

सर झुकाए खड़ा हूं मैं तेरे दर पे, अब तो सुन लो दुआएं हमारी, भर दो झोली मेरी है मालिक, तू ही सहारा है दुनिया है सारी। इसी के साथ ये कार्यक्रम महफिले कव्वाली यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चित्रपट संगीत सदाबहार फिल्म संगीत की वो धारा जहां हर सुर में एहसास है, हर गीत में कहानी है और हर धुन दिल से दिल का रिश्ता जोड़ती है। तो आइए उन इन सुनहरे नगमों के साथ यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये पहला गीत।

तू मिले या ना मिले ये गम नहीं, तेरे गीत हर पल मेरे संग हैं कहीं, तेरी आवाज बन गई है मेरी सांसों की दान, जैसे हर धुन में बस बसा हो तेरा नाम। आप सुन रहे थे फिल्म रॉकस्टार से गीत मोहित चौहान की आवाज में, संगीत निर्देशन था यार रहमान का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म छिछोरे से केके की आवाज में, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। आइए अब सुनते हैं फिल्म किक से गीत नीति मोहन की आवाज में। संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। इसी के साथ ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं ही संपन्न होता है। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आकर, और अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। ये साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर

0: मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शॉपिंग सेंटर्स यानी आपके दुकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से अच्छी सफल बनाए और बच्चे भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। FCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या FCAT.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और

0: उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ

0: में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे उल्टा इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि दो टाइम तक घर के अंदर ही रहें और जब तक शायद हीट कम हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज होता है बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और न सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए, तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुबरुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मजाहिर से मुकाबला आरई के अपने अजम का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुबरुस की सिफारती एकेडमी के दरमियान

0: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरांदाजी को रोके बल्कि दरांदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलेदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि एक मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का ताउन करेंगे। क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजराय खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आजाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन पायदारी और आलमी पेशरफ में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूद पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट UG 2026 इम्तिहानात के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे जिसे इस महीने के 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन

के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरअज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रिसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: The coal gasification scheme has been announced to the tune of 37,000 crore rupees. It is a step in the right direction. How is this actually going to benefit consumers in the country? Because they would be the hardest hit by what's happening with the West Asia crisis.
1: Government's 37,500 crore surface coal gasification scheme is a game changer for India's self-reliance, because it would drive the shift of domestic coal into high-value synthetic gas and chemical products. This shift aggressively curbs India's heavy reliance on imports for vital commodities like LNG, urea, ammonia and methanol, while unlocking the value of vast domestic reserves. This initiative is fundamentally significant to India's energy security and the Atmanirbhar Bharat goals through several concrete pathways eradicating import dependencies. India currently imports over 50% of its LNG and 20% of its urea, as also 100% of its ammonia, 80-90% of its methanol. So by converting domestic coal into syngas, this scheme targets India's massive national gasification goals and directly replaces these foreign source critical chemicals and fuels.
0: Let's now hear what the Union Minister Ashwini Vaishnav had to say on coal gasification.
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
0: देयर इज ऑल्सो एन अपील बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन टेकिंग मेजर्स एज वी टुक ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक।
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी हो। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: Prabhu Dayal ji, why are we on a war footing right now?
1: Our Prime Minister urged citizens to restrain their consumption of petrol, diesel and gas. And this serves as a clear indicator of a high-stakes economic emergency triggered by external geopolitical shocks. So the Prime Minister's appeal to treat fuel conservation as a national duty in 2026 amid rising tensions in West Asia and a surging import bill signals that the situation has moved beyond routine budgetary challenges into a structural threat to India's economic stability. And the severity of the situation, as highlighted by the Prime Minister's remarks, can be understood through several key interlinked dimensions. You know, India imports vast majority of its oil and gas, making it vulnerable to volatile global prices. And the ongoing war in West Asia has pushed global energy prices to staggering levels, sharply reducing India's foreign exchange reserves. So therefore, by describing the situation as Sankat Ka Kaal, Prime Minister Modi is explicitly telling the nation that the luxury of high consumption is no longer sustainable.
0: Earlier today, Aditya Shukla, Akash.

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30।
3: अभी आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रविशंकर से राग सांझ कल्याण में सितार वादन।

आप सुन रहे थे राग सांझ कल्याण में सितार वादन। आइए अब सुनते हैं पंडित रविशंकर से ही राग यमन में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना पंडित रविशंकर से राग सांझ कल्याण और राग यमन में सितार वादन। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।